हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

No.

نبی کی نعتیں سنا سنا کر صدائیں دے کر بلا بلا

¡Qué!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज में आहे की करोल।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ओ खुशबाश हो जी तू जो खैर हो जे पयो राजन के रंग लाई।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
8: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
9: हुकूमत एपोसन जा नुमाइंदा स्पीकर दे चैंबर खां वापस रवाना। हुकूमती एपोसन नुमाइंदन गालियुनि जी नाकामी जो जिम्मेवार हिक ॿिए खे करार ॾेई छॾियो। ज़हरनि मूजिबि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में काउंटर टेररिज़म मुआहिदे खां केपी सरकार जे इनकार ऐं बानी पीटीआई सां मुलाकात वारनि मामलनि ते डेड लॉक रहियो। गरो वज़ीर मोहसिन नक़वी वाने सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात करे खेसि मामले ते ब्रीफिंग पिण ॾिनी।

वज़ीर-ए-आज़म जे सियासी मामलनि जे सलाहकार राणा सनावरा चयो आहे त लांग मार्च खे इस्लामाबाद जे हदनि में दाख़िल थियण न ॾिनो वेंदो। कंहिं बि क़िस्म जे विगोड़ ऐं इंतिशार खे कानून जे ताक़त सां रोकियो वेंदो। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तम थी वियो आहे। फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को वक़्तु मुक़ररु न आहे। सूबाई हुकूमत खे दहशतगर्दी जे हवाले सां पंहिंजे आइनी ज़िमेवारी पूरी करणी पवंदी। श्री रमा चयो त ॻाल्हियुनि दौरान उन्हनि जा ख़दशा ॿुधा आहिनि। चार भेरा उन्हनि मसवदो तब्दील करायो। उन्हनि लांग मार्च समेत ॿिनि मामलनि ते एग्रीमेंट खां इनकार कयो। दहशतगर्दी वारे मामले ते असां का बि सौदेबाज़ी न कंदासीं।

अलाम राजा नासिर अब्बास काफ़ी मामला हल हुआ नंढी नंढी गाल्हियुनि ते इख़्तिलाफ़ हो पीटीआई बहाने सां मुलाकात ऐं ज़ाती मामले ताईं पहुच वारे मामले ते 1.5 लाख आहे दहशतगर्दी वारे मामले ते नेशनल एक्शन प्लान जे हवाले सां उन्हनि जा ख़र्चा हुआ थी सघे थो अॼु ॻाल्हियुनि जो वधीक दौर थिए पर उन्हनि साफ़ साफ़ चई छॾियो आहे त हिन वक़्तु हू पीटीआई बानी सां मुलाक़ात जी पोज़ीशन में न आहिनि।

पीटीआई चेयरमैन बिरस गौर चयो आहे त लांग मार्च ते आहे, हर हाल में थींदो, उहो पुरअमन हूंदो। लांग मार्च जो जवाब एमरजेंसी आहे, गवर्नर राज न आहे। लांग मार्च जो वोट में अहिड़ा कदम न थियण घुर्जनि जंहिं सां आवाम में कावड़ जनम वठे। ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर ते इतफ़ाक़ न आहे थी सघियो, पर ॻाल्हियुनि लाइ दरवाज़ा खुलियल आहिनि।

0: आजकल इस्लामाबाद में काफी कुछ हो रहा है और सूबे के साथ जुड़े हुए और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा है, दहशतगर्दी का मुकाबला बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हो रहा है। अगर किसी वजह से वो इन दहशतगर्दों पे काबू नहीं हो सकते, उसके बाद उस दहशतगर्दी का असर हमारा शहर कराची पे हो, तो इसलिए पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को एक बहुत बड़ा अहम इशू समझता है, चाहते नहीं है कि हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। और एक तो हफ्ते से वो पाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की उस पार्टी से रास्ते में थे कि वो पाकी हुकूमत ने अपना जहन बना दिया था और फौजी से तैयार था कि वो चाह ये रहे थे कि फौजी तौर पर पख्तूनख्वा एमरजेंसी नाफिज किया जाए और गवर्नर रूल नाफिज किया जाए। और जबकि गवर्नर रूल और इमरजेंसी एक आईनी हथियार है, जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहां आपका एहतजाज एक हद तक बहुत कामयाब हो चुका है, आप अभी कितने दिन 10 दिन से ज्यादा तो इस्लामाबाद में है या नहीं, इस्लामाबाद तो बहुत बड़ा हुआ है और ये इल्जाम इन पे आ सकता है, वो साबित हो सकता है कि वो वफाक के साथ नहीं दे रहे, तो फिर हमें मजबूरन जो है इमरजेंसी या गवर्नर की तरफ शायद जाना पड़े। तो उससे पहले हमारा कोशिश ये है कि आप पीटीआई से रब्ता करें, आप अपना जो कामयाबी है लॉन्ग मार्च का वो माने और आप इसको इस मार्च को अब खत्म करें।
1: केपी में इमरजेंसी जो फैसलो थी वो हो असा वफाक हुकूमत के गाज लाइ राजी कयो, केपी हुकूमत दहशतगर्दी वाले मसले के अहमियत न डिनी ऐं वफाक सां सरकार न कयो तो मजबूरन इमरजेंसी या गवर्नर राज तरफ वञणो पवंदो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इस्लामाबाद में घणो कुझु थी रहियो आहे, 10 ॾींहं खां शहर बंदि आहे, केपी में दहशतगर्दी वधी रही आहे, सूबाई हुकूमत जो समूरो ध्यानु एहतजाज ते आहे, केपी हुकूमत दहशतगर्दी जे ख़ात्मे बाबति वफाक सां मुआदो करे, अफ़गानिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी पुठियां भारत जो हथ आहे, बलोचिस्तान जूं हालतूं ठीक न आहिनि, केपी में थींदड़ दहशतगर्दी जा असर सिंध ते बि पइजी रहिया आहिनि, दहशतगर्दी पीपुल्स पार्टी जी रेड लाइन आहे, उमीद आहे त इस्लामाबाद में वेठल सियासी जमायतूं मसले जो सियासी हल कढंदियूं।
0: और आज तक 1999 के जो वाटर रिपोर्ट थे उसे बरामद नहीं होता, खासतौर पर इस शहर कराची को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। कराची को वफाक ने एक सतोला सबूत के साथ डील किया गया और हमारा हम शिकायत करें कहां से शुरू, गैस तो यहां इस सुबह में पैदा होता है, आपके आई एल हक उनका है जहां ये सासा ये रिसोर्स पैदा हो, महरूम रखा जाता है, फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें इनके पास गैस नहीं है, इनके पास पानी नहीं, किस तरह का मंसूबा आपने कब से सुनते आ रहे हैं। पिछली हुकूमत में हमने वजीर आजम के साथ एक मंसूबा रखा तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि हमने बहुत सुना है आपका शिवाज स्पीड की जो नारा है और वो शिवाज स्पीड अगर कहीं जरूरत उसका है तो हमारा इसके फौ की मंसूबा में अफसोस के साथ मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। पूरे देश में वोटों पर बन सकता है लेकिन किसी वजह से हैदराबाद थकर की बात आती है तो वो पार्टी वहां भी हमें मायूस किया। तो शिकायतें हैं या जो तनकीद है उसको सुनते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, सिंध का कराची का सियासत में भी जो गंध है उसको भी आप अपना काम से साफ करें।
1: सिंध के कदम मुआदे मूजिब हिस्से जो पानी न मिलो है, कराची समेत समूरे सिंध पानी खोट के मुंह डे रही है, वफाक कराची सां माटली माह वारो सुलूक कयो आहे, कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जे इफ्ताही तकरीब खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे जेकॾहिं शहबाज स्पीड जे कंहिं रथा खे ज़रूरत आहे त उहा के फोर रथा आहे। सूबाई हुकूमत सुठो कमु करे रही आहे, सिंध में सियासी गंद खे पंहिंजी कारकर्दगी सां साफ़ कंदासीं। भारतीय बॉर्डर फोर्स जी फायरिंग में ॿिनि पाकिस्तानियुनि जी शहादत ते पाकिस्तान जो सख़्त एहतजाज, भारतीय नाज़िम उल अमूर परडे आफ़िस तलब एहतजाजी ख़त बि ॾिनो वियो, हथे खाली शहरियुनि खे दरअंदाज़ करार ॾियण वारे भारतीय कोशिश बि रद्द वाकियो, बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं हक ज़िंदगी जे संगीन भंजकड़ी करार भारत खां ज़िमेवार बॉर्डर फोर्स जे अलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो परडे खाते मुजिबि भारतीय बॉर्डर फोर्स हथे खाली बेगुनाह पाकिस्तानी शहरनि खे शहीद कयो भारत बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं आलमी कानून जे पासादारी यकीनी बणाए हथे खाली शहरियुनि ते बिना जवाज़ ऐं चिड़ी जराईंदड़ ताक़त इस्तेमाल कई वई अणवाकियुनि खे रोकण लाइ उपाउ वरिता वञनि।

साइंसी तहक़ीक़ तरक़ी खे बहितर तिबी नतीजनि में तब्दील करणो पवंदो। सिंध हुकूमत मयार तिबी सहूलियतूं फराहम करण लाइ पुरज़ुम आहे। कराची जे जना अस्पताल में तकरीबी ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे जदीद तिबी टेक्नोलॉजी ताईं रिसाई खे वधाइणो पवंदो। सिंध हुकूमत सिहत वारे शोबे में सहूलियतूं ॾींदी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि जे सलाहकार राणा सनाला चयो आहे त लांग मार्च खे इस्लामाबाद जे हंधनि में दाख़िल थियण न ॾिनो वेंदो। कंहिं बि क़िस्म जे वगोड़ इंतिशार खे कानून जी ताक़त सां रोकियो वेंदो। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तम थी वियो आहे, फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को वक़्तु मुक़रर न आहे। सूबाई हुकूमत खे दहशतगर्दीअ जे हवाले सां पंहिंजी आइनी ज़िमेवारी पूरी करणी पवंदी। श्री रहमान चयो त ॻाल्हियुनि दौरान हुननि जा ख़दशा ॿुधा आहिनि, चार भेरा हुननि जो मसवदो तब्दील करायो, हुननि लांग मार्च समेत ॿियनि मामलनि ते एग्रीमेंट खां इनकार कयो। दहशतगर्दी वारे मामले ते असां का बि सौदेबाज़ी न कंदासीं।

अलामा राजा नासिर अब्बास चयो आहे त काफ़ी मामला हल थी विया आहिनि, नंढे नंढनि ॻाल्हियुनि ते इख़्तिलाफ़ हो। पीटीआई बानी सां मुलाकात ऐं ज़ाती फालिज ताईं पहुच वारनि मामले ते बि डेडलॉक आहे। दहशतगर्दीअ वारे मामले ते नेशनल एक्शन प्लान जे हवाले सां हुननि जा ख़दशा थी सघे थो। अॼु ॻाल्हियुनि जो वधीक हिकु दौर थिए, पर हुननि साफ़ साफ़ चई छडि॒यो आहे त हिन वक़्तु हू पीटीआई बानी सां मुलाक़ात जे पोज़ीशन में न आहिनि।

पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर चाहे तो लॉन्ग मार्च तय आए हर हाल में थींदो वो पर अमन हूंदो लॉन्ग मार्च जो जवाब इमरजेंसी या गवर्नर राज ना है लॉन्ग मार्च के ओट में अड़ा कदम न थियण घुर्जन जैसा आवाम में कावड़ जन्म वे गाल दौर इतफाक ना थी सको पर गाल दरवाजा खुलियल आयन।

घरु मामलनि बाबति ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में सहकार न करण वारे मामले ते ॻाल्हियूं नाकाम थियूं आहिनि। केपी हुकूमत दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग में नेशनल एक्शन प्लान ते अमल नथी चाहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग पाकिस्तान जे इस्तेहकाम जी जंग आहे। पीटीआई खे सहकार करणु घुर्जे।

केपीए जे वडे वजीर सोहेल आफरीदी पारां अॼु खां लखी मरवत ऐं लांग मार्च जे पहिरें मरहलो शुरू करण जो ऐलान। सोहेल आफरीदीअ चयो त 8 अक्टूबर ते खेबर आबाद पहुची ईंदड़ हिकमत अमलीअ जो ऐलान कंदासीं। सोहेल आफरीदीअ जी वज़ीर आला हाउस पिशावर में पीटीआई अॻवाननि जुनेद अकबर ऐं आतिफ़ ख़ान सां लांग मार्च बाबति मुशावरत।

0: आपको मालूम है कि छाती का कैंसर एक खतरनाक और जान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemmé Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Hemmé Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
6: अभी बुधो प्या जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: जिंदगी एतमाद सा कुरान के संदो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55
2: हर दिन हर जिंदगी की लहर जीएफएम नेटवर्क सिंध की

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: हुकूमत ऐं अपोज़िशन में डेढ लाख बरकरार ॻाल्हियूं बिना नतीजे ख़तम. हुकूमती ऐं अपोज़िशन नुमाइंदनि ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार हिक ॿिए खे करार ॾेई छॾियो. ज़रियनि मूजिबि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में काउंटर टेररिज़म मुआहिदे खां केपी सरकार जे इनकार ऐं बानी पीटीआई सां मुलाक़ात दौरान मामलनि ते डेढ लाख रुकियो. घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ईवान में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात करे खेसि मामले ते ब्रीफिंग कोन ॾिनी. यमनी हुसैन जे सऊदी अरब जे वॾे ऑयल कंपनी आरामको में रिफाइनरीअ ते हमिलो जी दावा. हुसैन जो चवण आहे त सऊदी अरब पारां कमन जे राजधानी सना ऐं ॿियनि हमलनि जे जवाब में आरामको ते हमिलो कयो. ॿिए तरफ़ सऊदी इख़्तियारनि यमनी हुसैन जी दावा बेबुनियाद करार ॾेई छॾी. सिंध यूनिवर्सिटी जाम छोर

27 जी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में प्री एंट्री टेस्ट वरती पई वञे। पहिरें मरहले में टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवार हिसो वठी रहिया आहिनि। बैचलर डिग्री प्रोग्राम लाइ 19,416 ऐं सकरंड में जवाबदार नींगर खे नशो ॾेई मुबैना बदफेली जो निशानो बणाए फिटो करे छॾियो। खानज़ादा पाड़े जे रहवासी नींगर खे बदफेली जो निशानो बणाए 0.8 वटि फिटो कयो वियो। वारसनि चयो आहे त नींगर राति खां गुम हो, माण्हुनि नींगर खे खणी आया, ॿुधायो त 0.8 वटां मिलियो आहे। नींगर ते तशद बि थियल आहे, जवाबदारनि गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

चाहते पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहते पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम यू आर टूनिंग इनटू योर रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारे से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सभी सूट से हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज मुझे रहते हैं आज जी रुखसार सिंध की आवाज। हेलो कैसे हैं आप, आई होप सभी से जाना जाना भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टॉप से कूल एकदम स्ट्रॉन्ग हेल के साथ मुझे सुन रहे हैं जहां जहां भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरी पूरी 1 बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं सिंध की गुलजार है सुपर वाइट बाई अक्सर कस्मर जो कि आप सुनते हैं डेली बेसिस पर।

से प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं, तो जो वक्त हुआ जाता है 11:17 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, आप तमाम के लोगों की गलियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो इस वक्त में ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हो, ट्रक में हो, रिक्शा में हो, कार में हो, बाइक में हो, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हवा से जर्नी बदल देना है। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बहुत जगह रेडियो पर मौजूद है, अंतर कल रेडियो मतलब वो तमाम तो लोग जो लोग मैंने वहाँ पर रिजल्ट भेजी चाहिए। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। और जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़ रहे हो, कुछ बड़ा हो, कुछ नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों को। इसके अलावा मेरे यहाँ जीवन कभी शहरों शहरों और शवाह वादियों और पहाड़ों दरियाओं और गुजारों घरों और बाजारों छोटे बड़े मोहब्बत करने वाले और नफरत करने वाले को भी दिल से कहेंगे मैं अल्लाह में हम बखीर आगे में जी आया हूँ सब बिस्मिल्लाह। जिंदगी गुलजार है।

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी पहले गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे और आपको बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्स एंड कॉस्मेटिक्स।

ओके जी, प्रोग्राम में हम चलते हैं आगे एंड इसके साथ सर जी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके कार से। तो आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है @FM88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर भी आपको मिलते हैं लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। तो उसके नीचे आप कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ उस ऑडियो स्ट्रीमिंग को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे फर्दर अपने पेजेस, प्रोफाइल्स और ग्रुप्स में, सो दैट हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और उनको बता पाए कि उनकी जिंदगी गुलजार है और वो कैसे है सुपर वाइट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट और सुपर वाइट के ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आपको खूबसूरत बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान किया है अपना। तो अगर आप अपना अभी तक नुकसान कर रहे हैं तो नुकसान को फायदे में तब्दील करें और सुपर वाइट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि सुपर वाइट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।

रिवाइवरी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं. सुपर वाइट के प्रोडक्ट हैं विटामिन सी फेस वॉश और फेस वॉशेस के रेंज के बारे में अगर बताया जाए तो सुपर वाइट का विटामिन सी फेस वॉश आता है जो सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आता है. इसके अलावा सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश आता है. सुपर वाइट का टर्मेरिक फेस वॉश आता है. सुपर वाइट का राइस कोलेजन फेस वॉश आता है. ठीक है, तो ये फेस वॉशेज आते हैं. इसके अलावा जी इनकी क्रीम्स भी आती हैं, विटामिन सी की ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है जी. और सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है. सुपर वाइट की एंटी फ्रेकल क्रीम आती है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं. इसके अलावा सुपर वाइट की और फ्री एक्नी क्रीम भी आती है उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर एक्नी रहती है और एक्नी खत्म नहीं होती है. तो एक्नी खत्म होगी इसके इस्तेमाल से. इसके अलावा जी सुपर वाइट का वाइस कोलेजन ब्यूटी सोप भी आता है जी. इनके बूस्टर्स भी आते हैं, सीरम्स भी आते हैं जो आप क्रीम में एड करके क्रीम के रिजल्ट को डबल इनहेंस कर सकते हैं. सो गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है. सो हम चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी. एंड जब हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग हमारे पास होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जिसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ आगे चलेंगे. और सुपर वाइट की राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम भी आती है जो कि आपको देती है ग्लास स्किन.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे मैं खुश्क और बीरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जी खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जी खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क की आवाज।
1: ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/GFM88 की पेज के ऊपर आपको मिल रही है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। जिंदगी गुजार है कि स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उन पर हम जरा रोशनी डालेंगे। इसके

अलावा आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं 888-1-BASE, तो जरूर करें। इसके अलावा जी सुपर आईटी प्रोडक्ट जो कि आपको बना रहे हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हेल्दी और स्किन दे रहे हैं आपको, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो हम जरा रोशनी डालते हैं जी। और सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट्स वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो कि यूज करने से आपको मिल रही है वो खूबसूरती जो कि पहले कभी भी नहीं। सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम वो तमाम तो लोग यूज कर सकते हैं जो कि फेस के ऊपर बहुत ज्यादा डलनेस, बहुत ज्यादा छाइयां, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, ये सब कुछ हो गया है तो वो यूज कर सकते हैं इसको। और यूज करने के बाद देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती आएगी, और खूबसूरती ऐसी आएगी कि आपको पता चलेगा, और सिर्फ आपको ही नहीं आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबसे पहले वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे कि हाँ जी ये जो खूबसूरती है ये आई कैसे है, किधर से आई है, इतने खूबसूरत तो आप पहले कभी भी न थे, इतनी अट्रैक्शन कभी भी आई।

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, सॉन्ग के साथ साथ हम ले रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स एंड नेक्स्ट कॉलर हमारे लाइन पे मौजूद होंगे. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जैबुल निसा, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी. जैबुल निसा, मुझे ये बताइए, प्रोग्राम सुनती हैं? थोड़ा सा लाउडली बात करें, प्रोग्राम सुनती हैं?
1: हाँ
0: हाँ. ओके, प्रोग्राम सुनती हैं, कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी
0: जा रहे
1: और
0: सुपर वाइट. वाओ, अच्छा मुझे बताओ कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज किए हैं कभी?
1: मैं अभी छोटी हूँ.
0: अभी हेलो,
1: अभी छोटी हूँ. अभी
0: कितनी छोटी हैं?
1: 13 साल की हैं.
0: 13 साल की हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सुपर वाइट के, वो आप लगा सकती हैं, यूज कर सकती हैं. जैबुल निसा
1: जी, जी
0: ओके, मुझे बताओ और कुछ कहना है?
1: नहीं नहीं.
0: चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, थैंक यू अल्लाह हाफिज जी. 03000 1348 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और कॉल करने के साथ साथ आप लोग सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं. अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वेरी बैड, करना चाहिए आपको. और इसके अलावा सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि कोरियन फॉर्मूला है कोरियन स्किन को बनाने के लिए. तो वो तमाम तो लोग, वो तमाम तो लड़कियां, वो तमाम तो खातें जिनका ड्रीम है कि हमारी रियाज स्किन हो, कोरियन स्किन हो, सो वो यूज कर सकते हैं इसको. सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जे FM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: KPMA Security Forces ji karwai 8 dehshatgard marj viya DI Khan me dehshatgardan ji maujoodgi ji kuch itlaat te operation kayo hoyo. Security Forces mujib operation me marj viyal fitnal kharjan ja tre commander bhi shamil aayan. मारजी वाल दहशतगर्दन वटां वडे अंग में हथियार ए परडेही करंसी हथ आई। सिंध यूनिवर्सिटी जामछरो में तालीमी साल 2027 जे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी प्री एंट्री टेस्ट वरती पई वञे। पहिरें मरहले जी टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवार हिसो वठी रहिया आहिनि। बैचलर प्रोग्राम लाइ 19,416 मास्टर ए बीएस टिन साल 3,095 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराई। सुबह दुरो भरसा वाह के गुजर रात का लगल घारो बंद न थी सको। वाह के घारे सबब कमंद वण केलन के बागन समेत बो फसल पानी हेठ अची वो। इलाके वासिन पांजे मदद पान तहत रात का वी घारो बंद करण की कोशिश में रुदल। सकरंड में जवाबदार नींगर के नशो डण बाद मुबैना बदफेली जो निशानो बनाए फिटो करे वया। खानजादा पाड़े जे रहवासी नींगर के बद

ये जो निशानो बनाए 0.8 फिटो कयो वयो। वारसन चयो आए त नींगर रात का गुम हो, मानू नींगर के खणी आया ए बुधायो त हु 0.8 मिलियो आए। नींगर ते तशद्दुद भी थियल आए, जवाबदारन के गिरफ्तार कर इंसाफ फराहम कई वे। मटियारी भरसा तेज रफ्तार कार ड्राइवर जो रोड पार कंदड़न के टक्कर, चार जणा जख्मी। कौमी शराह तेज रफ्तार कार ड्राइवर के कंट्रोल मां निकरी, रोड क्रॉस कंदड़न के टक्कर हयो, चार जणा जख्मी थी पिया। हादसे में दिलशायर मंगरियो, हमजा बासित, शीराज शदीद जख्मी थी पिया, जिन के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो।

खेरपुर में इलेक्ट्रिक के दुकान में शॉर्ट सर्किट सबब बाहि लखे रुपयनि जो सामान सड़ी रख दुकानदार मुझ बाहि लॻण करे संदसि 15 लख रुपयनि जो नुक़सान थियो आहे।

0: हुसैन जी सऊदी अरब जे वॾे ऑयल कंपनी आरामको जे रिफाइनरी ते हमले जी दावा। हुसैन जो चवण आहे त सऊदी अरब पारां यमन जे राजधानी सना ऐं ॿियनि हमलनि जे जवाब में आरामको ते हमलो कयो। ॿिए तरफ़ सऊदी इख़्तियारनि यमनी हुसैन जी दावा बेबुनियाद करार ॾेई छॾी।
1: शादी के बाद पहली बार ससुराल आए हो,
2: गिल्ट लिए बगैर कैसे जा सकते हो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: ड्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल कंदा। शहर जे हर मेडिकल स्टोर ए जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे। हेल्पलाइन नंबर 03141705558।
3: खुशखबरी, अल राफे फाउंडेशन ए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन लाड़काने जे सहकार सा आपका रियायती क्लिनिक लाड़काने में हाने मुख्तलिफ शोबन जा माहिर स्पेशलिस्ट ए तजुर्बेकार डॉक्टर हर किस्म जे बीमारिन जी इंतहाई रियायती फीस में चका सकंदा। जड़ो के शुगर, मैदे, जिगर, गुर्दे, रगुन, हडन, दम, छाती, जहनी बीमारिन, बाड़न जे बीमारिन खां अलावा सभिनी बीमारिन जे इलाज लाए नामवर डॉक्टर्स मौजूद आहिन। जड़ो के प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अबड़ो, प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद शेख, प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम सिद्दीकी, प्रोफेसर डॉक्टर अजीज जलबाणी, प्रोफेसर डॉक्टर बदर जुणेजो, प्रोफेसर

0: आपका रैती क्लिनिक लाड़काणा रेजस फिफड़न में जारो ए पानी जो भरजन दम ए सहको साह की तकलीफ ए छाती के कैंसर जो इलाज कयो वञे थो। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो फिफड़न जे बीमारियों जो माहिर एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज जेल रोड लाड़काणो। क्लिनिक टाइम रोजाना सुबह जो 10 बजे का मंझन जो 1 बजे ताई शाम जो 4 बजे का रात जो 9 बजे ताई आचर जे दिन सुबह जो 10 बजे का शाम जो 4 बजे ताई जुमे जे दिन क्लिनिक बंद रह राबते के लिए 07440553777 मोबाइल नंबर 0330126439 याद रखा अपॉइंटमेंट टेलीफोन मोबाइल नंबर के जरिए भी डिनी वेंदी है।
1: अनीस खैर तो आहे मंडकाए तो घुमी धक लगो तई छा
2: हाओ यार अब्दुल्ला एक्सीडेंट में जंख जो हडो भजी पियो तोखे त खबर आ गरीबी हाल आ पैसा भी कोनन के सोचा तो ऑपरेशन किथा कराया
1: भाऊ परेशान न थी लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो इलाज भी अड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी वेंदे।
0: गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो। इते रोजानो हडन ए जोड़न जे मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो जैमे रोजानो चकास मुफ्त रिपोर्टू 40% फ्री एक्सरे 40% फ्री ऑपरेशन में डॉक्टर जी का भी फी न आहे। असा वट हडन ए जोड़न जो सूर संदन जो सूर कुन रग जो सूर यूरिक एसिड जेल जो सूर शुगर जा फट हथन पेरन जो सुन थियण पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घिंटी फाटक लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई आचर ते सुबह जो 10 बजे का शाम जो 3 बजे ताई डॉक्टर साहब हर अंगारे ते शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई शान मेडिकल सेंटर वकील कॉलोनी लाड़काणे में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा। राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03158794117 0333754061
3: मोरो
4: नौशहरो
3: मीरपुर खास
4: लाड़काना
3: सखर
4: गूंज रही है हर जगह पर
3: सिंध की आवाज
4: जीए FM 88 नेटवर्क।

अच्छा ये कह रहे हैं कि किसी इंसान ने गलत इल्जाम देकर कल शाम से बुखार है मुझे और आगे इन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा. ओके अल्लाह करे आपका बुखार जल्दी से उतर जाए.

कमेंट्स के साथ साथ हम आगे चलते हैं एंड हम कमेंट्स की तरफ भी आते हैं, कॉल्स की तरफ भी आते हैं और सुपर वाइट की तरफ भी आते हैं. तो सुपर वाइट और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो वेरी बैड, जल्दी से कर लें. और सुपर वाइट के और भी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं. मतलब क्या ऐसा नहीं है जो सुपर वाइट वाले ने ना बनाया. और पेट्रोलियम जली और हल्दी की जो है ब्लीच क्रीम इनकी आती है. इसके अलावा जी इनकी पेट्रोलियम जली बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आती है. और अब सर्दियों की जो एक बहुत अहम जरूरत है ना हर इंसान की, वो है जी पेट्रोलियम जली, जो कि आप लोग बाय करने जाएंगे. तो इस सीजन आपने करना ये है कि पेट्रोलियम जली अगर लेनी है तो वो आपने लेनी है जी सुपर वाइट वालों की. कोकाओ बटर के फ्लेवर में आती है जी सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली. इसके अलावा सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली लेमन में आती है, लेमन की फ्रेग्रेंस और लेमन की खूबियों के साथ. इसके अलावा जी पिंक में भी आती है जी सुपर वाइट पेट्रोलियम जली. और ये जो पेट्रोलियम जली डिफरेंट अलग अलग फ्लेवर्स में आपको मिल रही है, बहुत कमाल की पेट्रोलियम जली है. इसको यूज कर सकते हैं आप इस सीजन में, ठीक है जी. तो ये बड़ी कमाल की स्किन आपकी बना देगी. अगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ड्राइनेस का जो है सामना करना पड़ता है, जिन लोगों की स्किन खास तौर पर बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो सर्दियां आने के बाद उनकी स्किन मजीद और ज्यादा ड्राई होने लग जाती है. तो आप लोग यूज करेंगे. अच्छा, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनके लिए खास तौर पर सुपर वाइट वालों ने सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम बना दी है. पहले ही 3 दिन में विजिबल रिजल्ट देखेंगे इसके इस्तेमाल से, ठीक है. इसका फायदा यह है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है. डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के साथ साथ करती यह है कि आपकी स्किन से पिंपल्स को खत्म करती है मुकम्मल तौर पे. और पिंपल्स को खत्म करने के बाद करती क्या है, करती यह है कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस और खूबसूरत बनाती है. तो जब आपकी स्किन फ्लॉलेस और खूबसूरत लगती है तो आपकी स्किन बेदाग हो जाती है और आपकी स्किन इस कदर खूबसूरत लगती है कि स्किन खूबसूरत होने के बाद, चेहरा खूबसूरत होने के बाद एक अलग सी अट्रैक्शन आपकी जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है. और यही वजह होती है कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स आपको खूबसूरत बनाते हैं. अच्छा, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम वो तमाम तर लोग यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है. स्किन ऑयली होने के बाद आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए जो कि आपकी स्किन टाइप से जो है रिलेटेड हो, आपकी स्किन टाइप को जो है ना मतलब कि आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपकी स्किन को ट्रीट करे, ठीक है. तो वो जो ब्यूटी क्रीम है वो है जी ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की, जो कि आप यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट वालों की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम

पाने की आवाज मुझे डबल आ रही है या ये वाकई डबल है। इस गाने को हम क्या करेंगे, आगे चल के चेंज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही थी ऑयल फ्री फेस वॉश के बारे में, तो ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वालों की आती है, इसके साथ आपको ऑयल फ्री फेस वॉश भी यूज करना है। अगर तो आप क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं, सजाज आप यूज करेंगे सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश भी साथ में, ठीक है। सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश यूज करेंगे, इसको यूज करने से आपका जो मजीद और ऑयल आपकी स्किन पे आता है, और खास तौर पे मतलब कि सर्दियां हो गर्मियां हो आपकी स्किन पे वो ऑयल रहता ही रहता है, उस ऑयल की वजह से आपकी एक्ने का इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्ने के साथ साथ और भी बहुत सारे मसले मसाइल जो कि ऑयली स्किन वालों को फेस करने पड़ रहे होते हैं। लेकिन ऑयली स्किन वालों का जो एक मतलब फायदा यह है ऑयली स्किन होने का कि उनकी स्किन पे जो है ना झुर्रियां देर से पड़ती हैं, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली होती है। तो स्किन जब उनकी ऑयली होती है तो उनकी जो स्किन है ना वो देर से उस पर जो है फाइन लाइंस और ये चीजें आती हैं। खैर ये तो एक अलग सा फायदा है, लेकिन आप लोग करेंगे ये कि ऑयल फ्री फेस वॉश को भी यूज करेंगे, और ऑयली स्किन टाइप वाले लोग खास तौर पर खवातीन जिनके फेस के ऊपर मेकअप नहीं टिकता ऑयली होने की वजह से, तो यही वजह है कि वो मेकओवर को भी सही से कैरी नहीं कर पाते। खैर सर्दियों में तो हो जाता है, गर्मियों में नहीं हो पाता। तो इन तमाम तर मसले मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम प्लस सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश, जो कि स्किन को कमाल का खूबसूरत बना देगा।

ओके एंड उजैर हमें मैसेज कर रहे हैं जो सॉरी कमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस, मेरी पसंद का सॉन्ग प्ले करेंगी क्या? कौन सी पसंद है आपकी, कौन सा सॉन्ग पसंद है आपको? अच्छा इसके अलावा 03000113488 के ऊपर एक कॉलर लेते हैं जी. हेलो. ओके कॉलर ड्रॉप हो रहे हैं आज हमारे, पता नहीं क्यों, लेकिन नेक्स्ट. अच्छा ये भी ड्रॉप हो गया, खैर. ओके जी हेलो हेलो. ओके जी आवाज नहीं आ रही है और कॉल हमारी क्यों बार बार ड्रॉप हो रही है. ये भी ड्रॉप हो गई, खैर हम ट्राई करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे और कॉल्स को हम लेते रहेंगे. 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स और साथ में हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. और आप सुन रहे हैं सुपर वाइट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: अरे नहीं, खुश्क और बेरोनों की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनकी नमी के लॉक करे चावरन जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइन झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट. उन गुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

back once again. Aap sun rahe hain Zindagi Gulzar, sponsored by Super White Products by Exa Cosmetics aur Super White ke super se bhi upar ke products jinke taamon se aap ye program sun rahe hain, enjoy kar rahe hain. And iske ilawa ji aap log mujhe join kar rahe hain program mein teen tareeqe kar se call kar rahe hain 03000113488. Iske ilawa aap log mujhe 8881 pe messages kar sakte hain, comment kar sakte hain jo hamare Facebook pages ke upar. तो फेसबुक पेजेस पे आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. इसके अलावा जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स है जिनमें आप लोग इसका फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं. जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम आप लोगों ने लेनी है, प्लस सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्ने क्रीम आप लोगों ने लेनी है, और सुपर वाइट का ऑयल फ्री सीरम आप लोगों ने लेना है. ये तीन चीजें, और चौथी चीज इसके साथ ये है कि सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आप लोगों ने लेना है. ठीक है, ये जो है पांच चीजें आपने बाय करनी है. एंड बाय करने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि मिक्स करना है आपस में फेस वॉश के अलावा सारी चीजों को आपस में मिक्स करना है. किसको? सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट एक्नी ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. ठीक है, एक जार में आपको मिलेगी जो एक्नी वाली है वो ट्यूब की पैकेजिंग में आपको मिलेगी, प्लस इसका सिरम. और इनको आपस में मिक्स करना है. मेक श्योर कि जब आप मिक्स कर रहे हो तीनों चीजों को तो जो आपका जार है वो ग्लास का होना चाहिए. ठीक है, ग्लास का जार होगा ज्यादा इफेक्टिव होगा. और ग्लास के जार में इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको स्टोर कर लेना है. स्टोर करने के बाद इसको रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करना है. अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने फेस को वॉश करना है सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से. उसके बाद फिर आपने क्रीम को अप्लाई करना है फेस को ड्राई करने के बाद. ठीक है, मेक श्योर कि आपका फेस गीला नहीं हो. गीले फेस के ऊपर लगाएंगे रिजल्ट स्लो मिलेगा. ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है. एंड दिन में जितनी भी बार फेस को वॉश करें आप सुपर वाइट के ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं. सो डैट आपको इसके बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे पहले ही तीन दिन में. अच्छा, साथ साथ मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं. यारी मदद सदाकत हुसैन मीरानी साहब, बच्चन शाह मीरानी सखर से हमें सुन रहे हैं. सुपर वाइट शो में पहली मर्तबा शामिल हो रहा हूँ. उम्मीद है वेलकम शो में कहेंगे. जी वेलकम कहेंगे आपको शो में. सुपर वाइट क्रीम का छोटा बाजी हेल्पलाइन का नंबर बताएं. हेल्पलाइन का नंबर बताएं. हेल्पलाइन का नंबर आपको बताएंगे जी. इसके अलावा अदी बहन रुखसार एसएमएस में नेम लिखा था सागर नियाज हुसैन चांडियो. अच्छा, नेम आपका पहुंचा नहीं है, मेरे ख्याल से मिसिंग पार्ट आया आपका मैसेज. तो थैंक यू सो मच सागर नियाज हुसैन चांडियो के आपने हमें मैसेज किया. इसके अलावा जी

रुको शाम शाम के साथ साथ आगे चलेंगे हम और जी कॉल्स में आप लोगों की लेना स्टार्ट कर देती हूँ या ले लेती हूँ और हमारी कॉल्स कभी कभार हैंग हो जाती हैं. सो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कोई बात नहीं, हम कॉल्स को लेंगे 03000113488 के ऊपर. आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स, ठीक है. तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए जो टेलीफोन लाइन्स हैं वो हमने कर दी हैं ओपन, आप लोग कॉल कर सकते हैं. और साथ साथ कॉमेंट्स की तरफ मैं मूव करूंगी, बहुत सारे कॉमेंट मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त आप लोगों के. सो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जो इस वक्त ऑडियो स्ट्रीमिंग लाइव है उसको आप शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. नजीर खोसो ने हमें कॉमेंट किया है बलोचिस्तान से, तलहा अंजुम का कोई सॉन्ग प्ले करें, तलहा अंजुम का अफसाने प्ले करें, या चले कोई अच्छा सा प्ले करते हैं, प्ले करेंगे, ठीक है. इसके अलावा जी कहां गए कॉमेंट, मिर्जा की लहरी, मिर्जा के लहरी बालान शाह बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं जी. वेलकम टू द शो, बलोचिस्तान वाले बहुत ज्यादा शो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वेलकम टू द शो. और इसके अलावा जी और क्या करेंगे हम, और ये करेंगे हम कि मैं सोच रही हूँ हमें मूव करना चाहिए दूसरे गाने की तरफ. एंड अनदर सॉन्ग इज बाय मुस्तफा जाहिद, इसको सुनते हैं और आगे चलते हैं.

0: अच्छा इसके अलावा जी एन उजैर कहते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें. अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वही हैं जिसका शक हमेशा सही और फैसला हमेशा. आपके कमेंट पढ़ के मुझे फील हुआ. अली हसन ने हमें कमेंट किया है जी दवाज दादू से. ये मैं पहली दफा रीड कर रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके कॉलर लाइन पे मेरे साथ. हेलो
1: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम कौन कहाँ से?
1: मैं बाजी मोहम्मद आलिम कोट डीजी से
0: बात करें. पहली दफा कॉल की है?
1: पहली दफा कॉल की है. अब
0: वेरी नाइस. मुझे बताएं कौन सा प्रोग्राम है ये
1: जी?
0: कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? किस प्रोग्राम में कॉल की है?
1: बाजी मैंने आपका शो चल रहा है इसके लिए कॉल की थी.
0: क्या नाम है इसका?
1: मेरा नाम इसका नाम पता नहीं है. पहले दफा कॉल की है.
0: मेरा नाम पता है?
1: आपका नाम पर नहीं पता.
0: मेरा नाम भी नहीं पता. अच्छा फिर क्या पता है? जो पता है वो बताएं.
1: आपको गाना सुनाऊंगा.
0: मुझे गाना सुनाएंगे? कौन सा गाना?
1: गाना सुनाऊंगा उर्दू
0: गाना. कौन सा सुनाए तो सही ना, पता तो चले ना.
1: आप सुनाए ना एक उर्दू गाना.
0: अच्छा अभी आपने कहा मैं सुनाऊंगा तो मैंने कहा सुनाए.
1: मैं भी सुनाऊंगा. कौन सा सुनाऊंगा? सब गाने मुझे याद हैं.
0: चले आप छोड़े बस मैं आपको सुनाती हूँ. आप वो सुने फिर आप वो गाइएगा
1: जी.
0: ठीक है बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. एक गाना सुनाएंगे और वो एक गाना सुना ना सके खैर कोई बात नहीं. हम सुनाएंगे आपको एक गाना एंड गाने बहुत सारे हैं मेरे पास. और मैं वही हूँ जो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें से भी कौन सा ज्यादा अच्छा है. वो वाला प्ले होना चाहिए.

Karaoke G, just like Super White product और Super White के product जिसमें Super White की Rise Beauty Cream आती है, Super White की Anti Acne Oil Free Cream आती है जी, और Vitamin C Cream, Strawberry Beauty Cream, Super White की Turmeric Beauty Cream और इनके face washes क्या कमाल के products हैं जी, और अक्सर cosmetics वाले ये तमाम products आपकी खूबसूरती को increase करने के लिए बनाते हैं और आप खूबसूरत बनते भी हैं. इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है जी.

0: चमक रे सारे चांद तारे चांद तारे.
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by.
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6.
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: केपी हुकूमत अफगान कैंपों के खात्मे पनाहगीर की डे वापसी से राजी थी हुई. वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कौमी एक्शन प्लान से अमल दरामद करने की खातरी कराई हुई. केपी हुकूमत खातरी कराई तो सवाबी में दहशतगर्दन के महफूज थाक न मिलंदा. 72 कलाक में लिखत में मुआहदों अमल दरामद मनसूबो जमा कराने से इतफाक थो. केपी हुकूमत अफगान पनाहगीर की डे वापसी ए कैंप के खात्मे की हिमायत सभी अफगान अबूरी हुकूमत से भी राबते में न रहने इतफाक किया.

0: जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी आपने अर्म्स खुलियल हुजण जी दावा बावजूद कार्रवाई जारी रहियूं। ईरान शर्तूं पूरियूं न थियण ताईं आबने अर्म्स न खोलींदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाब चयो आहे त ईरान जो मौक़िफ़ मुकमल तौर वाज़े आहे त अमरीका जेसी ताईं इस्लामाबाद मुफ़ाहमत यादाशनामे में तय थियल 7 ईरानी शर्तूं पूरियूं न कंदो। आबने अर्म्स बंदि रहंदो। अमरीका खे समझणो पवंदो त मामले खे ब्रेक ॾियण जो वक़्तु ख़तम थी चुको आहे। हिक तरफ़े मुतालबा तस्लीम करण जो दौर हाणे न आहे रहियो। सिंध यूनिवर्सिटी जे आमछोरो में तालीमी साल 2027 जे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी प्री एंट्री टेस्ट वरिती वई। पहिरें मरहले में टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8000 खां वधीक उमेदवार। सालनि लाइ 3095 उमेदवार रजिस्ट्रेशन कराई। लाड़काणे में चेकिंग दौरान हथियारबंदनि जी फायरिंग में 2 पुलिस अहलकार ज़ख़्मी। लाहौरी पाड़े में चेकिंग दौरान ॾोहारनि पुलिस मथां फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अहलकार अली ज़ेब अबड़ो ऐं आशिक पुल ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जो चवणु आहे त अहलकार चेकिंग करे रहिया हुआ त मोटरसाइकिल सवारनि खे बीहण जो इशारो ॾिनो। न बीहण ते अहलकारनि सदनि पीछो कयो त ॾोहारनि मथां फायरिंग कई। सोबो दरो जे वाह खे गुज़िरियल रात खां लॻल घारो बंदि न थी सघियो। वाह खे घारे सबबि कमंद वण ऐं केलनि जे बागनि समेत ॿियो फसल पाणी हेठि अची वियो। इलाइक़े वासियुनि पंहिंजी मदद पाण तहत राति खां वठी घारो बंदि करण जे कोशिशुनि में रुधल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी। हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
7: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

खूबसूरत जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

क्या बातें, बहुत ही खूबसूरत सी नात हमने यहाँ पर सुनी और आप सुन रहे हैं वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले वो बता देते हैं। जनाब तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है, यानी कि जो सवाल होने वाला है वो क्या होगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। आज मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका अगर जिस्म का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो दोबारा से जो है ना वो उग जाता है, दोबारा से वो जो हिस्सा है ना उसका मुकम्मल हो जाता है। जैसे अगर हम प्लांट को काट देते हैं तो वैसे ही प्लांट की जगह पर वहीं पर एक और शाख उग जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही वो कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जिसका अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से उसे जो है ना वो उगा देता है। आज के प्रोग्राम का ये सवाल है, आपने क्या करना है इसका जवाब देना है। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ओके, साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो वो भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। सुनने वाले लोगों को भी ना ये पता चले कि भाई आप लोग जो हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके कितने ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बताते रहेंगे। आप पोस्ट को लाइक और शेयर करना जो है ना वो मत छोड़िए, लाइक और शेयर करते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल होना चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर बताए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो कि डायल करके बिल्कुल सही आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 आई मेरा नंबर आहे 03-27-38-43-09 नंबर साइन जैसे तुम डायल करे दुनिया के कड़े भी कोने में मौजूद आ तो तुम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराए सको था। तो बाबा तुम कहीं सिटी का असा के बुधो था, तुम जो कहीं गोठ का तालुक है तो हर जगह से तुम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल करायो, तुम्हारे लिए आसानी थी वेंदी, बस तुम वेंदा ही तुम परचेज करेंदा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश की क्या क्या क्वालिटीज है वो आप लोगों को बिल्कुल बताती रहूंगी। आप टॉपिक को फॉलो कीजिए, मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके जिस्म का कोई पार्ट अगर कट भी जाए तो वो दोबारा उसे उगा लेता है। इनके अलावा आपकी जी फीडबैक्स मुझे काफी सारे मौसूल हो चुके हैं। आप बस पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और यहाँ पर सबसे पहले चाचा खाले जुनेजो का कमेंट कहते हैं कि आई हो खुश आयो बेटा सिद्रा माँ सफा मजे में तामुदा की आयो, और कहते हैं गुड आफ्टरनून हो चुका है, गुड आफ्टरनून। और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ है मटियारी से, आपने मुझे ज्वाइन किया, कहते हैं मेरे शॉप से सॉन्ग सुना दो मुमताज लाशारी का, माँ कोशिश किया थी भात हमारे सबने जो फरमाइश हलाइना से। अल्लाह दिना भाई हमें कश्मोर से सुन रहे हैं, अल्लाह दिना भाई को भी वेलकम हो गया। और साथ साथ हमारे साथ है मोहम्मद जमान भाई, लिखते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माई स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू माई स्वीट ब्रो। और निजाम भट्टी लिखते हैं कि दिल बहुत अनमोल होते हैं, यूं ही एक के हवाले नहीं करते, एक के हवाले नहीं करते मतलब है कि इंसान के नजर। ओके ओके। और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी एक और मैसेज मुलाजिम भाई का, वालेकुम अस्सलाम मुलाजिम भाई। और जैन अली लिखते हैं कि इश्क ने पकड़ा ना था गालिब अभी वेशद का रंग, रह गया था दिल में जो कुछ जोक खवारी, हाय हाय
ہائے ہائے یہ آپ لوگ جو اپنی شاعریاں بھیجتے ہیں, لکھتے ہیں کہ حدود عشق کے پیمانے نہیں ہوتے, جو مخلص ہو وہ ہر کسی کے دیوانے نہیں ہوتے. اللہ جائی بدا. اچھا فرما ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام, گڈ آفٹرنون, ہیو اے نائس ڈے, اللہ سے تمہیں خوش رکھے, تھینک یو ویری مچ, تمہاں سے سگٹ موجود ہے. اور زین لکھتے ہیں کہ فرض کرو تم کچھ نہ, ہاں جی فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کے, فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کے بھی. ایسا ہوتا ہے بھائی آج کل کے دور میں, اٹس نارمل, اور یہ چیز مجھے لگتا ہے نارمل ہو چکی ہے دنیا میں, لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں. لیکن

यहाँ पर आपको जो ये चीज बता रहे ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, ये बिल्कुल सच्ची है। तो इसके ऊपर अमल कीजिए, जिंदगी में खूबसूरती हासिल कीजिए और ठट सीजिए। अच्छा मुलाजिम भाई को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। चाचा तुम गाने की फरमाइश कई है, गाने की तुम लिंक शेयर करी सर जो बिल्कुल अलाय वी। और हमारे साथ है फहीम भाई, क्या कहते हैं तेरी महफिल। अच्छा हाँ लिखा है, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, कुछ देर अपनी दहलीज पर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अच्छा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम, मदद कहते रेशम गली लाड़काना से, अदा कैसी हो, तबीयत कैसी हो। भाव असफा ठीक है, तव बुधायो हाल अहिवाल जो, रेशम गली में अची वया आयो तो तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी वठी वञो, ठीक है। एंड डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना तव्हांखे आराम सा रेशम गली में मिली वेंदो। और सी यहाँ पर अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, आप हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। निजाम भट्टी भाई मटियारी से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू। और चाचा लिखते हैं कि हम परेशान नहीं थे, हम तो आपकी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की राह तक रहे थे, जी हम आ चुके हैं। और फरवा कहती है आप ही सम लाइन्स रीड कीजिएगा, इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है, फिर किस बात का घमंड है, आखिर सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और तारिक भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, तारिक भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। और हमारे साथ ही सैयद फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माय डियर आरजे सदरा मस्कान। सैयद फारूक शाह फ्रॉम खैरपुर एंड आपका पुराना लिसनर। जी जी बिल्कुल, आप हमारे पुराने लिसनर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा अलीशा कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेस्ड है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे और मेरे मामू परवेज अली चांडियो को। आप चलें क्या बात है, ऐसे ही आप इस्तेमाल करती रही। आप कुछ दिन पहले पूछ रही थी कि मिलती है या नहीं मिलती हमारे थारो शाह में, तो हमने अवेलेबल करा दी, तारिक भाई ने अवेलेबल करा दी, तो देख ली आपको मिल भी गई और आपने इस्तेमाल भी कर ली और आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं। तो ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करती जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। आपका हमारा साथ प्रोग्राम में पूरे 3 बजे तक का है, तो यहाँ पे टाइम जरा देखा तो टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा पूरे 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक की,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: होता तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, फिर आप बाद में ये कहते हैं कि भाई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर आपको सही तरीका बताया जाए, सही प्रोडक्ट बताया जाए, तो यकीनन आपको वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आप लोगों के लिए यस वन एंड ओनली डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप जानती हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है जनाब, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला है, ये भी कमाल धमाल चीज है जनाब। की डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो क्रीम है जिसे स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते ना उन्होंने मिलकर तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्वालिटीज अगर आप गिनने बैठे तो भाई क्या बात है। अगर आप जानना चाहें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे तैयार हुई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसके अंदर विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फाबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटा थायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और ये जो तमाम चीजें ही ना, ये सब मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को प्रीमियम फार्मूला बनाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो मैं विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का जिक्र करती हूँ ना, ये इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, यानी कि इतने सारे, मुझे लगता है करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स होंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना, ये दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे पूरे पाकिस्तान में जिनके अंदर एड किए गए हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना, ये बहुत ही कमाल की चीजें हैं। और ये उन महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर चीजें ऐड की जाती हैं जो कि लगाने के बाद, यूज करने के बाद आप लोगों को बहुत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई बताएं तो ये कौन सा महंगा सफर आपने फेशियल कराया है कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है ना वो टाइट हो जाएगी, आपके चेहरे पर रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, फ्रेकल्स खत्म हो जाएंगे, ये क्रेकल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको फेशियल वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और बात भी है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाले निखार देने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला भी हो और फेशियल वाला जो है ना आपको रिजल्ट्स भी दे, और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाला निखार दे, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। और ये जो आपको मार्केट में बताई जाती है ना कि भाई जल्दी से प्रोडक्ट ले जाएं, जल्दी में आपको गोरा बना देंगे, तो इस तरह के प्रोडक्ट से बचा करें क्योंकि उनके अंदर बड़े हार्श से केमिकल ऐड किए जाते हैं। और जब वो केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपकी मासूम और नाजुक सी जो स्किन होती है ना, वो जरा मैनेज नहीं कर पाती और आपकी स्किन खराब हो जाती है। तो कुछ इस तरह के लाइट वेट फार्मूले यूज किया करें जो मेडिकेटेड फार्मूले हो, आपकी स्किन के लिए सेफ हो, आपके लिए सेफ हो और उल्टा आपको खूबसूरती भी मिलती रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिल रहा है फर्ज कर लीजिए, तो फिर आपको जो नंबर बता रही हूँ उनके ऊपर आप जरूर किया करें, कॉल किया करें या फिर मैसेज किया करें, आपको रिस्पांस मिलेगा जनाब, और बड़ा फास्ट रिस्पांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉल करते रहें आपकी कॉल रिसीव ना हो, आपको रिस्पांस मिलेगा। और आप उन्हें बताइए कि फलां जगह पर जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दें, तो फाइनली आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जी उसके अलावा डी स्किन का फेस वॉश, उसकी क्या क्वालिटीज हैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आप जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी प्यारे प्यारे फीडबैक्स हमारे साथ मौजूद है, तो साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है प्रोग्राम के अंदर, तो उनको भी जरा शामिल प्रोग्राम रखते हैं। और जनाब उनको एक प्यारा सा गाना भी डेडिकेट करना है, और बताएं वो कौन है हमारे साथ। तो फाइन ट्रेडर्स बेरिया रोड से आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। आबिद भाई जो है जी उन्होंने नोशेरो और थारोशा पटीदन बहरिया रोड ऑल सिटीज में डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया है। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं नोशेरो फेरो से, थारोशा से, पटीदन से, बहरिया रोड से, आप सारे लोग अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एज के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और ये जनाब आबिद भाई ने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए। आबिद भाई हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और फाइन जनरल स्टोर जो है वो वहां पर उनकी शॉपिंग पे, यानी कि वो उनकी शॉप है। तो आबिद भाई को हम वेलकम कहते हैं, प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं और उनके लिए एक प्यारा सा गाना हमारी लिस्ट में लाइनअप है, तो हम गाना इंजॉय करेंगे साथ साथ और आप लोगों के साथ मजीद बातें करेंगे कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आइए जरा ये प्यारा सा गाना इंजॉय कर लेते हैं। और हमारे साथ माहिर इरफान सियाल साहब भी मौजूद है, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, वी लिसनिंग योर शो फ्रॉम लियाकतपुर। ओके सर जी, आपको वेलकम इन खुशामदीद। तारिक भाई लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे आबिद भाई, फाइन ट्रेडर्स बेरिया रोड से। आबिद भाई को वेलकम इन खुशामदीद के साथ ये प्यारा गाना डेडिकेट करते हैं, तो आइए मिलकर इंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: ਬੱਚਾ
1: क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही सुपर कूल सा गाना जो कि आप एंजॉय करें हमारे साथ साथ मौजूद है और प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जनाब मालूमात हासिल करते जा रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज भी करते जा रहे हैं ना। बिल्कुल जी, मुझे बताइए। और सैयद फारूक भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बाजी ओके जी ओके। परवा कहती है कि आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है अख बदली हाजिर यो गानो तवा जला हलाए बैठू था। और उजेफ हमारे साथ है। उजेफ ओके, हेलो उजेफ, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम आरजे सदरा, आप कैसी हैं? दीदार बिरोही, टाइम बहुत ही कम होता है इसलिए प्रोग्राम तो सुनते हैं लेकिन शामिल नहीं होने का टाइम मिलता। अरे भाई एक आधा कॉमेंट कर दिया करें, आपको शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा। और सैयद फारूक भाई कहते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम है जो इधर ना सुन रहा हूँ, थैंक यू लाडली आरजे। अरे भाई मेरे प्रोग्राम में तो स्टार्टिंग में नाती चलती है, आपको वेलकम कहा जाता है। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या बता रहे हैं जरा मुझे बताएं, कब इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके करीबी जनरल स्टोर्स में मिल रही है नहीं? और इसी के साथ साथ आबिद अली हमारे साथ है। आबिद भाई हमारे साथ है फाइन जनरल स्टोर से, बेरिया रोड से आपने मुझे ज्वाइन किया है। अवेलेबल डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा फाइन जनरल स्टोर पर जाइएगा, बेरिया रोड वाले जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आपके लिए फाइन जनरल स्टोर पर आबिद भाई जो है वो आपको देंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट जो भी आप परचेज करना चाहें। तो जितने भी लोग आकर मुझे ये कहते हैं ना कि बाजी हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा या फिर हम जाते हैं तो दुकानदार हमें कोई और ही प्रोडक्ट दे देता है, तो अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं उनके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं होती और आपको वो कोई और प्रोडक्ट जो है वो पकड़ा देता है, कहता है कि भाई ये ले जाए ये अच्छा है, तो आप ये निशानी याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इस क्रीम के ऊपर जो फोटो है वो डॉक्टर आंटी का फोटो है, डॉक्टर माइक जो फोटो है सर, समझी आप? तो जॾहिं तव्हां हीउ ॾिसो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वॾनि अखरनि में लिखियलु आहे ऐं डॉक्टर माइक जो फोटो आहे त बाबा तव्हां समझी वञो, केतिरो बि मतिलबु मासूम माण्हू हूंदो न इहा चीज़ त हुनखे नोटिस थी वेंदी त बाबा डॉक्टर माइक जो फोटो आहे त हीअ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां सही तरीक़े सां सही प्रोडक्ट परचेज़ करे अचो तॾहिं तव्हांखे उहे रिज़ल्ट मिलंदा जेके तव्हां हासिल करणु चाहियो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूलो आहे त का टेंशन बि न आहे त बाबा असां स्किन असांजी सेंसिटिव आहे लॻाए सघूं था नथा लॻाए सघूं, त हर स्किन जे मथां तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था, चाहे तव्हांजी स्किन सेंसिटिव हुजे, ऑयली हुजे, नॉर्मल हुजे, ड्राई हुजे, कॉम्बिनेशन टाइप हुजे, हर स्किन जे यूज़ जे मुताबिक़ आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। मर्द हज़रात ख़वातीन तव्हां सभु लॻाए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञो बाबा परचेज़ करे अचो।

बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते जा रहे हैं। और ज़ेफ लिखते हैं कि आज हम भी आए हैं, बहुत अच्छा किया जी आपने, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मेहताब अली इंटर में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक। अलीशा लिखती है कि उसकी आंखें एक तरफ, जादू टोना एक तरफ, हाय अल्लाह। लिखती है कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सद्दिको

बिल्कुल जी भाइयो न भाइयो पर असी वहां जायो अस रोज वहां के बुधाने इदासी त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तमा जे खूबसूरती लए छो जरूरी आ है सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप यूज करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो परचेज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। अच्छा फरवा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं जी और अलीशा कहती है कि मैं तुम्हें इतना सोचती हूँ कि तुम मुझे दिखाई देने लगती हो। अरे भाई बाप रे मोहम्मद मीरन जखरानी हमें सुन रहे हैं जेकब आवाज से बहुत शुक्रिया प्यारे भाई को वेलकम हो गया। बशीर बलोच हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप बताएं कहती हैं आपका शो सुन रहा हूँ कराची अच्छा कायदाबाद से बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम ओके हो गया भाई जी कहती हैं आपका शो सुपर से भी ऊपर आपकी वॉइस माशाल्लाह लाजवाब है अदी जियो तमा भी जियो भा पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो जियो हाँ जी।

चाचा कहते हैं के कोने खाना के कुंड खा दुनिया जे दी स्किन ब्यूटी क्रीम शो बुधी रहा हां जी दुनिया जे सडी कुंड खा सा के मानु बुधन पया आई दी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कन पया सैया तां के खबर रहे दी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में न बल्कि बाहरन मुल्कन में भी तां के मिली रही है अगर तां जो फर्ज काडे बाहर वणण जो इरादो थे तो या तां वनी रहा हो तो टेंशन न वठो बाबा उते भी तां के दी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी सो फिलहाल तो तमा इते आयो मौजूद पाकिस्तान में लाड़काने में या सिटी केड़े भी खतां जो ताल्लुक आहे तो ता पाजे करीबी जनरल स्टोर से हल्या वनो ता नालो वठी तलब कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी या निशानी डॉक्टर माई जो फोटो अथस जेके जेके बेचारा पढ़ियल ना हन मानु जिन के नालो न इंदो आहे पर रोसा डी स्किन आहे बाबा ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथा एक डॉक्टर माई जो फोटो आहे आई उन के अलावा बाकी जेके पढ़ियल आन वे ता नालो डिसी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचन था सो तहां भी वठी जो तहां भी सोना थियो बाबा तहां जो भी पूरो पूरो हकाय खूबसूरत थी अण आई पोस्ट के लाइक और शेयर करना हेलो अच्छा जान मोहम्मद खास केली भाई कहते हैं हम भी सुन रहे हैं भाई जान आपको भी वेलकम कहते हैं आबिद भाई कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम बेरिया रोड से सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच आबिद भाई और जेफ लिखते हैं कि 2 साल से आपका शो सुन रहा हूं आज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है अरे भाई 2 साल से सुन रहे आज पहली बार आए ऐसी भी क्या मजबूरियां कि 2 साल सिर्फ सुनते ही रहे हैं फिर तो आपको मेरे प्रोग्राम की सारी बातें पता होंगी आपको ये भी पता होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बताइए जल्दी से और जान मोहम्मद खास के लिए कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जबरदस्त आवाज थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई अर मोहम्मद गोला भाई जगह बाबासी हमारे साथ मौजूद है थैंक यू प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है मैं जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ूं ये ऊपर भागते जा रहे हैं बिलावल हमारे साथ है बिलावल वसन वसन आबाद शहर का तमाशा के ज्वाइन करवाए हुआ थैंक यू नरेश हमारे साथ मौजूद है नरेश लिखते हैं सलाम आदाब ऑल ऑफ यू वॉचिंग फ्रॉम इंडिया यो इंडिया वाले भी आ चुके हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए इंडिया वालों

भाई ये है बलोची गाना, लेकिन ये इसकी वाइब इतनी कमाल की ना कि सुन के बड़ा ही मजा आ जाता है। और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। ये फहीम भाई लिखते कहता डी स्किन का फेस वॉश मेरे सामने पड़ा है, कमेंट में फोटो भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो हाँ जी आप मुझे फोटो भेज देते। ठीक है तवा ते यकीन ट्रस्ट आ तवा ते। उजैफ लिखते हैं कि आजकल सारे शायर बने फिर रहे हैं। हाँ भाई मोहब्बत कुछ चीज ही ऐसी है। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं स्वीटी। बिलावल भाई कहते हैं कि तमाम बेहतरीन प्रोग्राम वसनाबाद शहर खां तमा के बुधी रहा आयो सबनी तमा सोनन दोस्तन के सलाम दिना एंड सो वालेकुम अस्सलाम। नरेश भाई लिखते हैं कि नाउ इंडिया टाइम ठीक। हां जी इंडिया आधा घंटा आगे है। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सारी ख्वाहिशें अगर पूरी होती तो शायद तकदीर की खूबसूरती खो जाती। कुछ ना मिलता भी कभी कभी, कुछ ना मिलना भी कभी कभी नसीब की मेहरबानी होती है। और बेशक अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है, बेहतरीन से भी बेहतरीन होता है।

उसको लाइक और शेयर करना जरूरी हो जाता है। वो इसलिए ताकि हम बहुत से लोगों को बता पाए कि भाई साहब आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानिए और आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और जेन कहते हैं कि हम ना आवाज आएंगे मोहब्बत से ये गाना हाजिर हाजिर लगायूं था थोड़ा सब्र करो। और मेहर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस यू मैम आर जी, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो भाई आपकी मेहरबानी है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है। अच्छा फरवाद तुम्हारा गानो लिखियो ओके। फहीम भाई कहते हैं आपको टॉपिक का जवाब मिलता जा रहा है, मैंने अभी तक टॉपिक नहीं सुना, मेहमान आए हैं तो। अच्छा टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं वो कौन सा एनिमल है जिसका अगर कोई एक बॉडी पार्ट कट भी जाए तो वो उसे दोबारा से उगा देता है। हाँ जी वो एनिमल है लेकिन मैं प्लांट्स की पता नहीं क्यों बातें कर रही हूँ। और अबू हनीफ लिखते हैं कि खामोश जुबा उदास दिल सोए हुए नसीब, ऐ जिंदगी तेरे तोहफों पर हम आह करें या वाह करें। भैया आप वाह ही कीजिए क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पर हमारे साथ टाइम चेक है और न्यूज ब्रेक है, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हो, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty.
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर दारो
0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
6: जो कार के टक्कर लगन सबब पंज जणा फौत थी वया लाश अस्पताल मुंतकिल फौतन में सुभारो खान राजपर संदस पुट्र इम्तियाज ऐं ॿिया शामिल

हुकूमत पोइ ते हटी वई। घर वज़ीर मोहसिन नकवी चयो आहे त केपी हुकूमत 72 कलाकनि अंदर लिखत में मुआदे अमल दरामद मनसूबो जमा करण ते इतफ़ाक कयो। मुआदे में दहशतगर्दी जे खात्मे जे सूबाई ज़िमेवारी ऐं हथियारबंदनि फ़ौज सां सहकार वधाइण शामिल आहे। पुलिस एक्ट 2026 ते नज़रसानी दहशतगर्दनि खे सूबे में कार्रवाई या महफ़ूज़ ठिकाणा ठाहिण लाइ रोकण ते बि इतफ़ाक़ कयो वियो। गुज़िर राति हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में ॻाल्हियूं बिना नतीजे ख़तम थियूं ऐं ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर बि तय न थी सघियो। केपीए जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ॻाल्हियुनि जी कमेटीअ खे जारी कयल मसवदो जारी करे छॾियो। सोहेल आफरीदी चयो त ड्राफ्ट में को बि गैर क़ानूनी या गैर क़ानूनी हक़ न आहे। मुतालबो त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर जे मुलाक़ात जो बंदोबस्तु कयो वञे।

M6 मोटर वे ठहण ला टीन साल आसरा डींदड़ वफाकी हुकूमत पारा ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटर वे M6 ठहण वारो कम शुरू करण जो ऐलान। वफाकी वजीर अलीम खान चयो आहे त टीन सालनि खां देर जो शिकार मोटर वे जी तमीर शुरू थियण खां वञे पई। MQM6 जहिड़े तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिली रहियो आहे। M6 मोटर वे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटर वे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जे तरक़ी लाइ अहम साबित थींदो। KPA में सिक्योरिटी फोर्सेज जी कार्रवाई 8 दहशतगर्द मारिजी विया। DI खान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगीअ जे गुझे इतलाउ ते आपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिबि आपरेशन में मारिजी वियल फितरनि

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ़ ॿीहर फौजी कार्रवाई जो इशारो ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान तबाह थी चुको आहे। हाणे सुवाल इहो आहे त मामिलो सवलाईअ सां हल थी वेंदो या ॾुखियाईअ सां। ईरान एटमी हथियार हासिल करण वारे मनसूबे में बि हथ खणी वियो आहे। ईरान पारां पंजनि ॾींहनि में आबनेरस में 7 आयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दावा ईरानी ख़बर एजेंसीअ मूजिबि कुवैत जे ॿिनि अरब इमारात जे टिनि जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे आबनेरस खुलियल हुजण जी दावा बावजूदि कार्रवाई जारी रही।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
8: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

लिए अब अवेलेबल करा दिया गया है। अगर ऐसा वाला सीन है कि आप पहले से जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल करा चुके हैं लेकिन डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं जब नंबर्स के ऊपर आप रابطہ करेंगे। तो नंबर्स के ऊपर रابطہ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप फेस वॉश को अवेलेबल कराना चाहते हैं या क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर्स के ऊपर رابطہ कीजिए, उससे ये आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराएंगे। और जनाब डायल करते रहिए 03-12-50-25-907 बुढ़ी 312 पंजाह 25-970 आई मियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुढ़ी 332 73-84-309 ही नंबर साइंस थी तुम्हारा रातो करे इजीली पाजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो अवेलेबल कराईंदा रहो वही खूबसूरत ही ना रहो बाबा हर किन जो हक आए खूबसूरत ही हर कोई चाहता है खूबसूरत रहना और खूबसूरत दिखना। तो अगर आप खूबसूरत दिखना या खूबसूरत रहने की बात आ जाती है तो ये वाला सीन हो जाता है कि जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लेते हैं तो हमें जल्दी में खूबसूरती तो मिल जाती है लेकिन खूबसूरती मिलना सिर्फ काफी नहीं होती, उस खूबसूरती को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा काफी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है जरूरी। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपने उस चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लिया है तो आप बस एक काम कीजिए, सारे प्रोडक्ट्स को गुड बाय टाटा बोलिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपनी जिंदगी में लेकर आइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास क्वालिटीज हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। और लोग आपसे पूछेंगे बताएं तो आजकल आप कौन से फेशियल्स करा रहे हैं, कौन से महंगे महंगे सैलून्स में जा रहे हैं, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हमारे पास या तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते वो महंगे फेशियल्स या हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पैसे की भी बचत हो जाएगी, आप लोगों के टाइम की भी बचत हो जाएगी। अगर आप लंबी चौड़ी स्किन केयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आप महंगे महंगे जो है ना वो प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है जो कि मुनासिब से पैसों में आपको मिल रही है, मुनासिब सी कीमतों के अंदर, और जो आपको रिजल्ट देने वाली है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त देने वाली है। अब ऐसा वाला सीन है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अब इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज हैं तो ये प्रोडक्ट तो काफी महंगा होगा, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आपके जो यानी कि मुनासिब कीमतों में आपको मिलने वाले हैं तो बस आप जाइएगा और परचेज करके देखिएगा और इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये चीज तो मेरी आप याद ही रख लीजिए। उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना जी अंदर वाइटामिन ई बीट्स आहिन, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ये जो चीजों आए ना वाइटामिन ई बीट्स आई माइक्रो बीट्स ये बाबा फेशियल के अंदर ये चीजों एड थियल हूं आहिन, इन्हनि ही वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना फेशियल की क्वालिटीज अची वही आहिन। तो अवां के जो रिजल्ट मिलंदा सुठा वारा वो इन ही चीज के करे मिलंदा। पूरे पाकिस्तान में ॾिसो था तव्हां केॾा प्रोडक्ट्स आहिनि, त उन्हनि हेॾनि सारे प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटामिन ई बीट्स आहिनि ऐं माइक्रो बीट्स आहिनि ऐं ॿ टे ॿिया प्रोडक्ट आहिनि पूरे पाकिस्तान में जंहिंजे अंदर इहे चीजूं एड थियल आहिनि। अगरि तव्हां वटि कोई सुठो प्रोडक्ट आहे मौजूद त उन मां फ़ाइदो वठो बाबा, इस्तेमाल कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है न ये 2 दिनों में आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसकी तो क्या ही बात बताऊं, क्योंकि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं मर्द हसरात खवातीन हर कोई डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकता है, ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है। और डी स्किन के फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन पर ये जो गर्द गुबार जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, डस्ट पॉल्यूशन जमा हो जाता है, और मर्द हसरात खास करके अपने स्किन के सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए तो भाई बेस्ट तरीका है कि आप बस डी स्किन का फेस वॉश यूज कर लीजिए। और डी स्किन का फेस वॉश सिर्फ यूज करना ही काफी हो जाता है, आपके चेहरे पर ये तमाम चीजें रिमूव हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है, आपकी चेहरे की स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और आप ग्लो करते रहते हैं। तो ग्लो कीजिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि मुझे पढ़कर और सुनकर बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके वाकई अच्छा रिजल्ट हासिल कर चुके हैं। और साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। जनाब आपकी मोहब्बत और समाज
बातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताइए वो कौन सा एनिमल है जिसके अगर जिस्म का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो दोबारा से जो है ना वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से वो पैदा हो जाता है। और इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। अगर आप मुझे 8881 पर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद रहिए। फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी हो जाती है, तो लाइक और शेयर किया करें। और मुझे बताएं आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरे पास आप लोगों के लिए गाने मौजूद हैं जी प्रोग्राम के अंदर, तो गाने बिल्कुल आप लोगों को सुनाते जाएंगे। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं ये वाला गाना सुन ही लेते हैं। और इस गाने की फरमाइश फरवानी करती थी, काफी दिनों से उनका गाना जरा इग्नोर हो रहा था, तो आज फाइनली उनका गाना एंजॉय करते हैं। और आप हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम।

ओके जी, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं तो उनकी जाने भी आ जाते हैं। और यहाँ पर हाँ जी गाना सेट कर रही थी मैं जरा। ओके सो यहाँ पर हमारे साथ हैं, एक मिनट में पैनल की जाने आ जाती हूँ। और हमारे साथ हैं ये गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई, कहते हैं आपका शो वेरी नाइस, अस्सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं आप और आपकी फैमिली, क्या बात है। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू लिखते हैं कि सॉन्ग बुधराय नुसरत फतेह अली खान का, गम हो या खुशी हो तुम मेरी जिंदगी हो तुम, यो गाना जड्डू मा वैसे भी हलाया हां, सो थैंक यू थैंक यू। मकसूद मल्हा कहते हैं हेलो सिद्रा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना, ओके आई ट्राई। और उनके अलावा गोट नबी दाद बम्बरो नारू खाए माम डिनो बम्बरो कहते अदी खुश हो, असि भी तवा जा आयो भाईर, जी जी बिल्कुल तवा जा सोना भाईर आयो, आई तवा वरी जदे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पो सफा सोना सोना थी वेना, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी कजो। इरम कहती है इरम ओ मिठी मिठी इरम के भी अलाए छा थी वेंदो आ बाबा, इरम एडी एडी गालू कंदी आ मतलब डिसी करे मुखे खिलेंदी आ, एडी का गाल को निकायरम तमा आजाई वहम कयो आहे। हां जी, और ये हमारे साथ गोट गुलाब लगारी खान, साबिर लगारी, सुल्तान लगारी, रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपका शो नाइस है। अच्छा ये मुझे ख्याल में भात वहाँ गानों लिखियो आए, सो मैं कोशिश क्या थी ताजी पसंद जो गानों हलाइंदासी, ठीक है। और हमारे साथ दादू खां इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशिर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर, एक मानू जे सर जी खातिर है हेवा जो गानों बुधायो तव, मैं कोशिश क्या थी गानों ताकि बुधराइंदासी। और हमारे साथ ही हमारी फजली, फजली कहती है हां जी लाइव आयो सफा जिंदा दिसो न। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सुनो चंदा, मेरी मसरूफियात के लम्हों में चैन की घड़ी है तो, आगे तुमको पता है जी जी आगे तो मैं सब कुछ जानती हूँ। और हमारे साथ ये अस्सलाम वालेकुम उस्ताद सिड्डो बाजी, उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगी, आप मोरों में भी अवेलेबल करा देना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि और आसानी हो जाए स्पेशली मेरे लिए। और एक सवाल था, वैसे मोरों में तो ऑलरेडी मिल रही है तो आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर मालूम लीजिएगा, ठीक है। और आपने सवाल क्या पूछा है लिखते हैं, हाँ लिखते हैं कि एक सवाल था मुझे उसका जवाब नहीं आ रहा था, प्लीज आप बता दीजिए, अंधेरा जब रात को होता है तो सूरज दिन को क्यों निकलता है, अगर सूरज की दुश्मनी अंधेरे से है तो रात को निकलता क्यों नहीं, आपका शागिर्द मोरू से फिर दोस्त भाई हमारे साथ है। देखिए कितना मासूमाना आपने सवाल पूछ लिया, एक तो इसे जनरली अगर देखा जाए तो ये सवाल इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई अल्लाह पाक ने देखे ना सारी चीजें अपनी तरतीब से तैयार रखी है। एक कौम थी जिसके ऊपर ऐसा था कि उनको जो ना सिर्फ रात ही रात दी गई थी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, तो ऐसा वाला सीन है कि दिन अगर ऐसा है कि सूरज जब रात को निकले तो या दिन को निकले एक ही बात है ना, क्योंकि रातों अल्लाह पाक ने आपको आराम के लिए दी है, तो अगर रात को भी सूरज निकला तो फिर मसला हो सकता है, तो अगर रात आपको आराम के लिए दी गई है तो आराम कीजिए, क्योंकि सूरज का काम है दिन में निकलना और ताकि आप अपने लिए अच्छे से दिन को गुजारें, काम करें, खाएं पिएं, और रात फिर जब हो जाए तो आप सुकून से सो जाइए, और नींद और आराम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अल्लाह पाक ने ये चीजें तरतीब से रखी हुई। अगर थोड़ा इस तरह का सीन हो जाए ना कि देखें सूरज ही सूरज हो और रात हो ही नहीं तो फिर मसला हो सकता है, इसीलिए जो चीज जिस तरह है लॉजिकल देखा जाए तो ये जरूरी है। और फिर दोस्त भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, क्योंकि मोरो में आपके लिए हमने अवेलेबल करा दी है पहले से ही, आप बस जाइएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर से जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करके आइएगा। वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हैं तो वो भी आप परचेज कीजिएगा।

क्या बात है, इतना बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करें। और साथ साथ अगर आप भी डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें। और चाचा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। और जान मोहम्मद खास के लिए भाई कहते हैं आपका अपना लिसनर कोट, अच्छा कोट गुलाम मोहम्मद से जान मोहम्मद खास के लिए आपका प्रोग्राम जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। और साथ साथ जो है ना जी जी बिल्कुल, आप लालकाना से रेशम गली में कहीं पर भी आप किसी भी शॉप पर चले जाएं वहां पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल होगा और मिल जाएगा सुकून से। तो लालकाना के लोगों के लिए तो कोई मेरे ख्याल में टेंशन की बात नहीं है, वैसे तो हर जगह हमने अवेलेबल करा रखे हैं, चाहे आप मोरो से हैं, मीरपुर खास से हैं, मटियारी से हैं, सकरन से हैं, मातली से हैं, नूरियाबाद से हैं, सखर से हैं, तो हर जगह से जाकर आप इजीली डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं।

अच्छा फहीम भाई, आप मिलिएगा, लेकिन बात कराने वाला सिस्टम जो ना ये जरा क्लोज है, तो बात नहीं हो सकती, बस आप उनसे मिलिएगा और डेज़ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। और इन खां अलावा जेको आ सो पोस्ट के तमाम लाइक एंड शेयर कोने कई वाए जल्दी करी बैठो। वही वफाई भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं। कहते हैं आपका शो माशाल्लाह बेहतरीन है, जेको पावा से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू, के साथ आपको वेलकम कहते हैं। और इकबाल आशारी हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, इकबाल भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, और आप भी डेज़ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हैं जी हमारे साथ उजेफ, कहते हैं हाँ हाँ सब पता है, चले जी अच्छी बात है। और कहते हैं इंडिया वाले जी, इंडिया वाले तो इस्तेमाल करेंगे लाजमी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और प्रिंस मोहसिन लाशारी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और ये जी चाचा ने हमारी पोस्ट को इंडिया तक पहुँचा दिया है, बहुत अच्छा किया चाचा आपने। और रशीद भाई बहुत शुक्रिया, आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं। और हमारे साथी आबिद भाई कहते हैं शुक्रिया मैडम, कोई बात नहीं प्यारे भाई। और कासिम सुमरो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपने भी हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, कासिम सुमरो आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और प्रभांजन त्रिपति हमारे साथ है, प्रभांजन त्रिपति जी आपको भी वेलकम हो गया, आप भी हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया के साथ आपको भी वेलकम कहते हैं। अख्तियार कोसो भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, भाईजान वेलकम। सुफियान अहमद, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। अब्दुल अजीज सुमरो भाई, वालेकुम अस्सलाम।

0: टिकता नहीं हूँ
1: बस भाई तलहा आ चुके हैं कौन तलहा मत पूछिएगा
0: वह कह रहे क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ
1: अच्छा ये जो दुनिया को ठीक करने की बातें आ जाती ना बीच में तो दुनिया को ठीक करने का जो जिम्मा होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर इंसान की मुझे लगता है कि हर इंसान जो ना वो हर इंसान को हिस्सा देना चाहिए इस चीज के अंदर. देखिए जरा आपने दुनिया को ठीक आप नहीं कर सकते बेशक लेकिन आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं. तो जरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए और खुद रोज एक अच्छा काम करने की कोशिश करें खुद को सुधारने की कोशिश करें तो डेफिनेटली कुछ चेंज आ सकता है दुनिया के अंदर. और किशोर भाई हमें ज्वाइन कर चुके कहते हेलो हाय अदा अज नाश्तो कराई वन जा हाँ उठे लगे तो तवा चलो ठीक है तवा जो नाश्तो असंत खाईंदा बुधायो अच्छा. अख्तियार खुसू भाई को प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया और साथ साथ आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा. किशोर भाई कहते हैं कि तुझे खुशी लाए आऊं कुछ भी कर सकां तो
0: कैसे लिखता हूं ये बस
1: आऊं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया तो पंजे दोस्तन के भी चवंदस हु भी लगाए आपस वारा आस पास वारा सब लगाए हेठ वेठल भी लगाए मथे वेठल आयन उए भी लगाए मतलब सब लगाए ये गीत गाइंदा रहंदा राइमिंग बन गई वैसे वाकई देखा जाए तो. आप बिल्कुल सबको बोले टी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सब लगाए ताम भी लगाए ताम भी लगाए ताम भी लगायो अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर डी स्किन जो फेस वॉश भी आए ना कि नरे साजो सही है
0: असर करते हैं तेरे दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों जिक्र होता है हर महफिल में वो चाहते पर दिख

0: क्यों जिक्र हो।
1: बिल्कुल जी सर, तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम देने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो रातों में, तो लाजमी लगाइएगा और कमाल देखिएगा। आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बहुत शुक्रिया। अबू हनीफ अल बलूची लिखते हैं कि इन फूल फरोशियों को कैसे समझाऊं, उसकी खुशबू सिर्फ उसी से आती है, प्लीज सॉन्ग। अच्छा मैं ऐसा थी गानों मुख्य मिली तो हलाया वा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है। और इसी के साथ रमजान भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। रमजान भाई आपको भी वेलकम करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं। आप सुनिए जरा तलहा साहब की बात और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सोसाइटी से कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट डिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाएगी।

0: साफ में इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई, ना जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई, सर अब दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े बिछे हुए जाल बड़े।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 1.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी, Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार, सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न, खुश्क ऐं बेरोनकी स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेमे आहिन चावरन जो खूबियो आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, आई चावरन जो खूबियो जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर, आई रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट, उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल, सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

बिल्कुल जी, कुछ चीजों की वाकई जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इंसान मौजूद होते हैं जिनका होना हमारे लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बात जरा हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की करेंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसा वाला सीन हो चुका है कि आप अपने पसंदीदा इंसान को देना चाहते हैं तोहफे में डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, तब तो भाई क्या ही बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला है, अच्छा आपको निखार मिल चुका है, रिजल्ट आपको बेहतरीन मिले हैं, तो आप अपने प्रिय प्यारे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तोहफा दीजिए जनाब। वैसे भी कहते हैं तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो अगर आप भी अपनी मोहब्बतों को बढ़ाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तोहफा दीजिए और सबको बोलिए कि जनाब आप भी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम दिखाई दे, फ्रेश महसूस हो, लेकिन उसके लिए ये भी चीजें हम जो है ना वो देख रहे होते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। और खास करके आप उन प्रोडक्ट की जानिब जो है ना जाया करें जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार किए गए हो, जिनका फार्मूला लाइट रखा गया हो और जो कि आप लोगों के स्किन के हिसाब से तैयार हो और आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, अपने लिए अपनी रोजमर्रा की डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, और अपनी जल्द को केयर देने के लिए अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बना लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करते रहेंगे ना तो आप लोगों को एहसास होता है कि भैया वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कई मरतबा हम जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम थक जाते हैं कि भाई हमारी स्किन के ऊपर जो है ना कौन सा प्रोडक्ट सही साबित हो सकता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर यहाँ पर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं खवातीन हैं, तो आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा हासिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये जनाब सारे प्रोडक्ट से बहुत ही हटके और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट तैयार हुआ है क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फेशियल के रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा महसूस होता है आपको कि भाई आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। अच्छा ये चीज भी जरा मैं वाजे करती चलूँ कि आप लोगों ने ये चीज सुनी है प्रोग्राम के अंदर कि भाई सिद्रा बता रही है कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो हमें फेशियल के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो लगाने के तरीकेकार वो जरा स्किप कर देते हैं कि वो ऐसे लगाते हैं कि भाई जैसे आप कोई फेशियल कर रहे हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, तो लगाने के तरीकेकार भी आपको आने चाहिए। आप रात के टाइम इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम को क्योंकि दिन में वैसे ही आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो आप दिन में नहीं, आप रात में इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। रात में बस सुकून से अपना फेस वॉश कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और उंगलियों की मदद से आराम आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए, होले होले लगाइए और इस तरह लगाइए कि क्रीम थोड़ी आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। जब आप ये प्रोसेस सही से करते हैं तो क्रीम आपकी, ऐसा होता है ना कि जो लोग क्रीम लगाकर स्किन के ऊपर मसाज करने लग जाते हैं, तो मसाज नहीं किया करें भैया, सुकून से लगाएं, प्यार से लगाएं, क्रीम खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी और आपको अच्छे वाले रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश लगाइए। अगर आप ऑलरेडी लगा रहे हैं तो हमारे साथ रिजल्ट लाजमी शेयर कीजिएगा।

खां अलावा बाकी जगह सोना सोना माण्हू असांखे ॿुधनि पिया। सभिनी खे चऊं था बाबा भली करे आया प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में, ऐं जिन माण्हुनि अञा ताईं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल न करायो आहे त तव्हां बि अवेलेबल कराए सघो था। बसि तव्हांखे जेके नंबर्स ॿुधाईंदी आहियां उन नंबर ते रातो कयो। जिन माण्हुनि अञा ताईं नंबर्स नोट न आहिनि कया त नंबर नोट कयो, हाणे तव्हांखे ॿुधायां थी। ओके जी, सो नंबर है 03-12-50-25-907-312-50-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-273-4309-3032-73-84-309। ही ॿई नंबर सां जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो इस्तेमाल करते रहिए और आपको जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं वो हमारे साथ शेयर जरूर किया करें।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम एंजॉय करेंगे. साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी, उनकी जाने भी आते हैं. और यहाँ पर आयशा हमें सुन रही हैं. आयशा मेमन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है. आयशा को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं. और फजली कहती हैं जी जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहती हैं. आपको भी कहती हैं सलाम टू ऑल स्वीट सिस्टर्स. और मैं और अम्मी जान साथ में आपका शो सुन रही हैं. ओके जी, आप दोनों को वेलकम कहते हैं. अच्छा, दर्दे दिल कहती हैं कि कल शाम को आपने पूछा था ना शो में कम आते हो, थोड़ा सा काम था. मतलब ये नहीं कि मैं आपका शो नहीं सुनती. तुम तो लाइफ की खास इंसान हो, मतलब सबसे स्पेशल, सबसे स्पेशल. सोच लो.

ये बात है थोड़ी, ना सोना ना चांदी ना कोई महल। चले भाई सही बात है, आजकल सब यही चाहते हैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आई थिंक सो। सही बात है। अगर ये पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। वैसे कुछ लड़कियां पर ये ऐसी होती हैं, अगर उनको सब कुछ भी दिया जाए तो फिर भी वो। खैर जी अपनी अपनी बात है। और किशोर भाई कहते हैं कि हिन्ना भाखे चो हुना मुते छह महीना रात ऐं छह महीना ॾींहुं हूंदो आहे। ॾिसो हुननि माण्हुनि जी ज़िंदगी केॾी मुश्किल आहे, कॉम्प्लिकेटेड। सो अधे खे वाके थोरो घुमणो फिरणो पवंदो। और फई भाई हांजी हांजी फरवा फारवा खाईंदी बाबा, तव्हां अटेंशन छॾे ॾियो हाणे। अख़्तियार कोसो भाई कहते हैं आप जब जाती हो तो आपका अरे भाई आप पता नहीं क्या बात करें, मुझे आगे बात ही समझ नहीं आई। बस आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर हमने अवेलेबल करा दी है। और हुसैन हमारे साथ हैं, हुसैन जट भाई वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं नूरियाबाद से वसीम आपको सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई को वेलकम कहते हैं। रमजान भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं।

किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक थे जवाब थर्सडे को मैंने सही दिया था, कल भी मैंने नहीं सुना आपका जवाब, आज भी जवाब भूल जाओगे, इसलिए नदी नवे से जो जवाब किए मतलब असा फर्स्ट में क्या था आया ही लेट आयो तो लोगों ने दे दिया है जवाब, ठीक है आप बैठ जाइए अपनी सीट पर। और इकबाल भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया, ठीक हो गया।

0: ग्रेट सच एट थानवी एंड पीस।
1: ओके रे, सो गाना खत्म हो चुका है, दूसरा गाना हम लगा देंगे जो होने वाला है मास्टर मंजूर की आवाज में। एक भाई ने फरमाइश कर दी थी तो जरा हम इस गाने को भी सुन लेते हैं, और ये हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आप हमें सुन रहे हैं, कहते अदी केड़ा हाल है तमाम जा लता जुड़ो आवाज बाबा ये कुछ ज्यादा हो गया मैडम लता की क्या बात। और कहते हैं कि तमाम जो सदाकत हुसैन मीरानी भाई हमारे साथ हैं, साहब बच्चल शामियानी सखर से, हेल्पलाइन सेल ते राबतो कयो आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश सखर सिटी वञण थियो त खरीद करे ईंदस। ओके भा, ओके तमाम लाजमी खरीद कजो। थैंक यू सो मच तव्हां असांजे प्रोग्राम में मौजूद आहे। वैसे लता मैडम जो तव्हां नालो वरितो त इहा ॻाल्हि मूंखे यादि अची वई। ॾिसो ज़िंदगी जेका आहे न, केतिरी हर इंसान पंहिंजी ज़िंदगी खां ख़ुशि कोन्हे को। मूंखे हिकिड़ो मैडम लता जो इंटरव्यू मतिलबु मूं ॾिठो हुयो, जंहिंमें मैडम इहो चयो हुयो त उन खां हिकिड़ो सवाल पुछियो हुयो त अगरि मतिलबु तव्हांखे ॿियो जनम मिले त छा तव्हां ॿिए जनम में बि लता मंगेशकर थियणु चाहींदा। त उन ते मैडम जो हिकिड़ो जवाबु मिलियो, उहो मूंखे एतिरो मतिलबु इम्प्रेस करे चुको। मूं चयो जाइ बि यार ईअं आहे, अगरि असां खां बि कोई पुछे त तव्हां अगरि जेको ज़िंदगी तव्हां गुज़ारी आहे छा ॿियो दफ़ो तव्हांखे मौको मिले त तव्हां उहा गुज़ारींदा, त मैडम हिकिड़ो जवाबु ॾिनो त कॾहिं बि मां लता न थींदमि। छो त लता जी ज़िंदगी में जेके तकलीफ़ ऐं ॾुख आहिनि उहे सिर्फ़ लता खे ख़बर आहे। सो इहा चीज़ वाकई मूं उतां नोटिस कई त अगरि तव्हां इहो सवाल कंहिंखां बि पुछो, चाहे उहो केतिरो फेमस आहे, केतिरो रिच आहे, ऐं बज़ाहिर त तव्हांखे ख़ुशि नज़र ईंदो, पर उहा चीज़ हुनखे ख़बर हूंदी त हुन जी ज़िंदगी में छा पियो हले। असांखे ॾिसी करे लॻंदो बाबा वाह मैडम लता जी दीवानी, हुनजी आवाज़ जी दीवानी ऐं छा न वटि, पर उन खां पुछो त हुन चयो मां कॾहिं बि पंहिंजी ज़िंदगी में ॿीहर लता न थींदसि। इहा चीज़ आहे, इंसान खे कुझु बि मिली वञे थो, छा बि हू हासिल करे वञे, पर हू पंहिंजी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड मूंखे लॻे थो कॾहिं बि नथो थी सघे। बसि शुक्र गुज़ारी इंसान जे अंदरि हुजणु ज़रूरी आहे, ऐं जेको तव्हां वटि आहे हुन में ख़ुशि रहंदा कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल बि कंदा कयो। अच्छा, दादू खां इमदाद जतोई, अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशिर हुसैन जतोई, किफ़ातला जतोई, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर, ओयो बाबा हले तो गानो तवा एंजॉय कयो, और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम सदाकत हुसैन मीरानी साहब बच्चल शामियानी सखर से। सिस्टर मेरा पहला वाला एसएमएस नहीं, नहीं आपका पहला वाला मैसेज मैंने पढ़ लिया, और कहते हैं आप बहुत शुक्रिया जी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपने लिखा है कि तारिक भाई से बात हो गई है और यस भाई, तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपने कहाँ से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेज करना है। उन्होंने आपको बताया बिल्कुल इसी शॉप से जाकर आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करें या फिर व्हाइट एज के परचेज करें। बात एक ही है, मकसूद मला हमारे साथ कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई हाई, मुझे पता है मैंने यूज कर ली है जी, बिल्कुल ऐसे यूज करते रहिए। और ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई, कहते हैं हेलो आरजे भाउ, आप हो ना सफा मवेठी आए बाबा, तां दिल जाए कयो कम कार करे तो तां पंहिंजा और गोठ मोमन थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई शो तुम्हारा लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच सोना भा।

तारिक भाई ने एक मैसेज भेजा, कहते हैं ये लाजमी पढ़े मैडम सिद्रा, हमारे अच्छे कस्टमर हैं। ओके, सज्जाद रुस्तमानी माथली से हैं, मैसेज लिखा है, तमाम शायरी लिखी है मुझे ख्याल में। सज्जाद भाई लिखते हैं कि जिते माँ जावस

0: जाने का वक्त आ चुका है। तहां से मुलाकात जी का मुझे थे पाई हुआ।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ जी जाती अमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुलाकात में मुल्क की सियासी गाल जरियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हुकूमत ए अपोजिशन के गाल बाबत आगाही डिनी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। खानदानी मुलाकात का घर वजीर मोहसिन नकवी भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से संदस घर में मुलाकात कई। मोहसिन नकवी वजीर आजम से पीटीआई के एहतजाज ए सियासी सूरत हाल से गाल कई। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात का मोहसिन नकवी से मुलाकात कई। गाल के आखिरी मरहले में केपी हुकूमत पोते हटी वही। घरू वजीर मोहसिन नकवी है केपी हुकूमत बहत्तर कलाकन अंदर लिखत में मुआदे अमल दरामद मनसूबो जमा कराने इतफाक कयो। मुआदे के दहशतगर्दी के खात्मे के सूबाई जिम्मेवारी हथियारबंद फौज से सहकार वधायण शामिल है। पुलिस एक्ट 2026 ते नजरसानी दहशतगर्दन के सूबे में कार्रवाई या महफूज ठिकाणा ठाण लाय रोकण ते भी इतफाक कयो वयो। गुजरियल रात हुकूमत ए अपोजिशन में गालियों बिना नतीजे खत्म थियूं। गालन जो बियो दौर भी तय न थी सको। केपीए के वडे वजीर सोहेल आफरीदी गालन की कमेटी के जारी कल मसवदो जारी कर छो। सोहेल आफरीदी है ड्राफ्ट में को भी गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो न आए। मुतालबो हो तो वजीर आजम अपोजिशन लीडर में मुलाकात जो बंदोबस्त कयो वञे। वजीर आजम हुकूमत इतिहाद पीपी अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदन की एक गड़ियल सियासी कमेटी जोड़ी वञे।

कारकुनन जी मौजूदगी जे मुझे इतला ते ऑपरेशन कयो वयो। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिब ऑपरेशन में मारजी वाल फितनल खार जा टे कमांडर भी शामिल आन। मारजी वाल दहशतगर्दन वटा वडे अंग में हथियार ए परडेही करंसी हथ आई।

आबनाय अरुंस में सत आयल टैंकर्स के निशानो बनाने की दवा ईरानी खेबर एजेंसी मूजिब कुवैत के ब अरब इमारात के टिन जहाजन के निशानो बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आबनाय अरुंस खुलियल होने की दवा बावजूद कार्रवाई जारी रही। ईरान शर्तू पूरी न थियन ताई आबनाय अरुंस न खोलींद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाब है ईरान जो मौको मुकमल तौर वाजि है अमरीका जैसी तई इस्लामाबाद मुफामत यादाशनामे में तय थियल 17 ईरानी शर्तू पूरी न कद आबनाय अरुंस बंद रहंद। अमरीका के समझण पवन तो मामले के ड्रेग डण जो वक्त खत्म थी चुको है। एक तरफे मुतालबा तस्लीम करण जो दौर हाँ ना रो।

नए कोट में सिंध के इम्कानी विरांगे जमीनन वसीलन ते कब्जे ए पानी ते धाड़े खिलाफ रैली अवामी तहरीक ए सिंधियाणी तहरीक ख्वाजा चौक का प्रेस क्लब तई एतजाजी रैली कढ़ी वई।

अॻवण चयो त सिंध पाकिस्तान जो ख़ालिक सूबो आहे, सिंध खे भित लॻाइण सां मुल्क खे नथो हलाए सघजे। सिंध जे वहदत ख़िलाफ़ साज़िशूं कामयाब थियण न ॾींदासीं। सिंधुअ जे पाणीअ ते धाड़ो क़बूल न कराए।

0: सिंध पुलिस रुगो दावाऊं करण में पूरी, धाड़ेल राज ऐं कबीलाई तकरारनि जो ख़ात्मो न आणे सघी। सिंध में हर रोज़ को न को माण्हू मारिजी वञे थो, कॾहिं कॾहिं त पंज माण्हू बि क़तल थी वञनि था। लाड़काणे पुलिस गुज़िरियल ॾींहं ॾिठे जो गांगरा बिरादरीअ जे पंजनि ॼणनि खे क़तल कंदड़ हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। वाके जो केस दाख़िल सिकंदर गांगरे जे फरियाद ते अण सुञातल ऐं ॿिनि अण ॼातल माण्हुनि ख़िलाफ़ FIR में दाख़िल कयो वियो। FIR में ॼाणायो वियो आहे त एहसान गांगरो, अब्बास गांगरो, लाल खान गांगरो, रहीम खान फिदा, अयान आमिर, यासीन गुलाम मुस्तफ़ा, दोदो गांगरो ऐं ॿियनि पुराणे तकरार तां पंजनि ॼणनि खे क़तल कयो। फायरिंग में रजब अली संदसि पुटु क़ुर्बान, रियाज़ गांगरो समेत बिलावल गांगरो ऐं अब्दुला बिरोही मारिजी विया हुआ।
1: आप सुन रहे थे एम नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी। हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारीअ में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो।

0: लोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सुन जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनक स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चारनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे उन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अरे न खुश्क

0: दोनों की स्किन और इन जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चारनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिते की बनी है आवाज़
2: जीए FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज गीत आस जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: है कलंदर लाल
2: उसी खित्ते की बात
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जहां।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

नौशेरो फिरोज ऐं शाहपुर जहानिया वेझो धारधार रोड हादसनि में 11 ॼणा फौत। इलाज लाइ हैदराबाद वेंदड़ कंडियारो वासी हिक ई घर जा 5 भाती बेजल जो शिकार थी विया। नौशेरो फिरोज क़ौमी शाहरा ते कार ऐं ट्रॉलर में टकर थियो। हादसे में नौशाद परवीन सलमा रफ़ीक ऐं ड्राइवर आसिफ फौत थी विया। शाहपुर जहानिया वेझो बे कश्मोर वासी हिक कुटुंब जा 5 ॼणा फौत थी विया। 3 ज़ख़्मी संग्रा मोरी वटि हादसे में ॿिनि मासूम ॿारनि ऐं हिक औरत समेत 6 ॼणा फौत। लाश ऐं ज़ख़्मी शाहपुर जहानिया अस्पताल मुंतकिल। फौतनि मां ॿिनि ॼणनि जी कश्मोर वासी अली जान ऐं रहमत अला तौर सुञाणप थी।

ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार केपी जो वॾो वज़ीर आहे। अलाह न करे हिक बे जान वई त सुहेल आफरीदी ज़िमेवार हूंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी चयो त मुआदो तयार थी चुको हो, 99% इतफ़ाक बि थी वियो हो। मुआदो सदर खे ॾेखारे वापसि आयुसि त सुहेल आफरीदी मुआदो तब्दील कराए छॾियो। फैसला सुहेल आफरीदी खे करणा हुआ त पाण अची वेहे हा, जेकॾहिं ख़बर हुजे हा त मुआदो वीटो कयो वेंदो त ॻाल्हियूं ई न कयूं हा। असां दहशतगर्दी जे मामले ते ॻाल्हियूं कयूं था त हू इनकार कनि था, इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण न ॾींदासीं।

के पी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ॻाल्हियुनि जी कमेटीअ खे जारी कयल मसवदो जारी करे छॾियो। सोहेल आफरीदी चयो आहे त ड्राफ्ट में को बि गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो न आहे। मुतालबो हो त वज़ीर आज़म अपोज़ीशन लीडर विच में मुलाक़ात जो बंदोबस्त कयो वञे। वज़ीर आज़म हुकूमती इतिहाद पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़ीशन पार्टियुनि जे नुमाइंदनि जी हिकु गॾियल सियासी कमेटी जोड़े वञे। पीटीआई बानी ऐं बुशरा बीबीअ खे जेल मैनुअल मूजिबि हक़ ॾिना वञनि। सियासत जी आड़ में पीटीआई सिक्योरिटी जे मामलनि में संजीदा न आहे। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी मड़ियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बि एहतजाज जी उहा ई तारीख़ रखी जेका पीटीआई रखी हुई। ॿिन्हीअ जो पैटर्न साॻियो आहे। पाड़ेसरी मुल्क प्रॉक्सी ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करणु चाहे थो। हिकु गैंग पाड़ेसरी मुल्क मां हथियार पाकिस्तान आणींदी आहे। पीटीआई सां ॻाल्हियुनि में नाकामी बाबति घरू वज़ीर कुझु देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। M6 मोटरवे ठहण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कम शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देर जो शिकार मोटरवे जी तामीर शुरू थियण पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिली रहियो आहे। M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ी थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी जाती उमरा में नवाज़ शरीफ सां मुलाक़ात। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। ज़रियुनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ खे हुकूमत अपोज़ीशन जी ॻाल्हियुनि बाबति आगाही ॾिनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि मुलाक़ात में मौजूद। ख़ानदानी मुलाक़ात खां पोइ घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ संदसि घर में मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म सां पीटीआई जे एहतजाज ऐं सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ सां मुलाक़ात खां पोइ मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात कई।

केपी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। डीआई खान में दहशतगर्दन की मौजूदगी की गुजे इतलाते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिब ऑपरेशन में मारजी वियल फितना खारजन जा टे कमांडर भी शामिल आहिनि। मारजी वियल दहशतगर्दन वटां वॾे अंग में हथियार परॾेही करंसी बि हथाई आहे।

नौकोट में सिंध जी इम्कानी विरांगे ज़मीनन वसीलन ते कब्जे ए पानी ते धाड़े खिलाफ रैली अवामी तहरीक ए सिंधियानी तहरीक ख्वाजा चौक का प्रेस क्लब ताई एहतजाजी रैली कढ़ी। अगवाणन चयो तो सिंध पाकिस्तान जो खालिक है, सूबो सिंध के बेहतर से लगाए मुल्क के नथो हलाए सकजे। सिंध की वहदत खिलाफ साजिशू कामयाब थियण न डींदासीं। सिंधु के पानी ते धाड़ो कबूल ना है।

सिंध पुलिस रुगो दावाऊं करण में पूरी धाड़ एल्ट्राज ऐं कबीलाई तकरार उन जो खात्मो न आणे सघी। लाड़काणो पुलिस गुज़िरियल ॾींहं ॾिठे जो गांगरा बिरादरी जे 5 ॼणनि खे क़तल कंदड़ हिक बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। वाके जो केस मक़तूल रजब गांगरो जी भाउ सिकंदर गांगरो जे अलनि सुञातल ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। FIR में ॼाणायो वियो त जवाबदारनि अहसान गांगरो, अब्बास गांगरो, लाल खान गांगरो, रहीम खान, फिदा हुसैन, अयान, आमिर, यासीन, गुलाम मुस्तफ़ा, दोदो गांगरो ऐं ॿियनि पाणी तकरार तां 5 ॼणनि खे क़तल कयो। फायरिंग में रजब संदसि पुटु क़ुर्बान ऐं रियाज़ गांगरो समेत बिलावल गांगरो ऐं अब्दुल्ला बिरोही मारिजी विया हुआ।

특히 미별이 페리페리와 함께 사도 있어요. 안녕하세요. 키아키 아프니 아시고 마칸 아플리케이션 이렇게 아시기 위해 쇼 아와스타 कृष्णा आपके हमारे दरमियान जो हमेशा टाइम देता है मुझे बिल्कुल आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस सफर सखर से लाइफ आप लोग मुझे सुन रहे हैं और जियो सिमिटेट के पेज पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं साथ साथ वहाँ हमारा जो शो है वो लाइव चल रहा है

0: It's 5:30 PM. This soundtrack is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम
2: अवां जी स्किन डल एंड बेरोनक लगे थी हाने पेजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में
2: अवां जी स्किन डल एंड बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
5: है कलंदर लाल शहबाज
6: उसी खत्ते की बनी है आवाज
5: जीए FM नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

और जहाँ आप लोग इंजॉय कर रहे थे, अभी एक अरबी सॉन्ग मैंने प्ले किया था, तमल्लीमा, तो ठीक है, बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था ये सॉन्ग, तो इतने मतलब मैंने सिलेक्ट किया जिसमें से मुझे इसकी टोन, इसकी सिंगिंग मतलब अच्छा अंदाज लगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यही जो हमारे लिसनर थे एन जैफ की फरमाइश है, मैं ये वाला अरबिक सॉन्ग जो प्ले कर दूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग फरमाइश करते हैं कि भाई ये सॉन्ग प्ले कर दें, ये कर दें, तो इसी तरीके से आप लोग वो टॉपिक्स जिन पर आप लोग बात करना चाहते हैं मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करती रहूं। तो जी बिल्कुल, इस वक्त टाइम भी हो चुका है 5:56 और हम लोग बात कर रहे थे छोटी छोटी खुशियों के ऊपर कि आपकी नजर में क्या है, मतलब कि आपकी जिंदगी की वो छोटी सी खुशी क्या है, वो ऐसी क्या बात है जिससे जो आपको लगता है कि ये कोई खास मौका या बड़ी कामयाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में छोटी खुशियों के लिए अपनी। अच्छा जी, जिसे हम छोटी मोटी मिसाल अगर

बीबीए के जेल मैनुअल मूजिब हक डिना वन सियासत की आड़ में पीटीआई सिक्योरिटी के मामलों में संजीदा ना है। ममलकती वजीर तलाल चौधरी है तो पाबंदी मंडल ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी एहतजाज की उही तारीख रखी जका पीटीआई रखी हुई बिन्हीं जो पैटर्न सागो है। पाड़ेसरी मुल्क प्रॉक्सी जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहे तो एक गैंग पाड़ेसरी मुल्क में हथियार पाकिस्तान आणींदी है। पीटीआई से गाल्हि में नाकामी बाबत घरू वजीर कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो।

M6 मोटरवे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कम शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो त 30 सालनि खां देर जो शिकार मोटरवे जी तामीर शुरू थियण पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिली रहियो आहे। M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ अहम साबित थींदो। केपीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई, 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। DI खान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी जी ॻुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि ऑपरेशन में मारिजी वियल फितने ख़ारजनि जा 3 कमांडर बि शामिल आहिनि। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं परडे॒ही करंसी हथाई आहे।

ईरान जा शर्त पूरा न थियण ताईं आबनाह हुर्मुज़ न खुलंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाफ चयो आहे त ईरान जो मौक़िफ़ मुकमल तौर वाज़े आहे त अमरीका जेसि ताईं इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे में तय थियल सत ईरानी शर्तूं पूरियूं न कंदो आबनाह हुर्मुज़ बंदि रहंदो। अमरीका खे समझणो पवंदो त मामले खे ड्रेग ॾियण जो वक़्तु ख़तम थी चुको, हिकतरफ़ी मुतालबा तस्लीम करण जो दौर हाणे न

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थे जी का भी जरूरत न आए। जे करे तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आए तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

राजकेश में एक बार फिर से आप लोगों को सबको वेलकम करती हूँ। और ये रिश्ता दुआ से जो चिका आप लोग आवाज का तो जी बिल्कुल जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता तो ये खूबसूरत सा एहसास का जहाँ ख्याल का ये रिश्ता जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है अल्फाज आपकी आवाज मेरी। अच्छा जी तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से आगे की तरफ हम चलते हैं कि हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है, बहुत कम से कम होता जा रहा है। ये दो घंटे कैसे गुजरते हैं आप लोगों के साथ के पता ही नहीं चलता। कैसे ही आप लोग के साथ टाइम गुजरते हैं और पता भी नहीं चलता बिल्कुल भी। तो जी 5 बजे स्टार्ट होकर 7 बजने में कुछ ही मिनट जा रहे हैं तो जो खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सैटरडे एंड संडे। तो जी हमारे एक लिसनर से जब पूछा था कि आप डेली प्रोग्राम करती हैं, तो जी भाई मैं डेली प्रोग्राम नहीं करती, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कौन कर चुका है, इसको ना सैटरडे एंड संडे को ये एक शो आता है और शाम 5 से 7 बजे तक सैटरडे एंड संडे। इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे चल

की शक्ल सलमान से नहीं होती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ, पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता, फिर अपने आप से इश्क हो जाता, फिर अपने आप को आदमी

से मैसेज किया है, इलम से हमें मीरपुरखास से सुन रहे हैं, मीरपुरखास से हम मीरपुरखास से हैं और लुन खास है। अच्छा जी, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम को पसंद किया और जो आपने फरमाइश की है ना, अगर ये पाकिस्तानी होता ना तो मैं प्ले कर देती, आपका पाकिस्तानी सॉन्ग आप मुझे लिखकर भेजें, अगर मैं प्ले ना करूं तो फिर आप कहिएगा। बस आप इंडियन को हटा दें, बाकी अरबी तुर्की जिस जबान का सॉन्ग कहेंगे कोशिश करके प्ले कर दूंगी, ठीक है।

बिल्कुल खास से शो सुनहरी कहने के शो बहुत जबरदस्त है। तो जी बिल्कुल ये आप लोगों की पसंद है, जो आप लोग पसंद करते हैं तो हम वही लेकर आते हैं। और हमारे को लिसनर्स हैं मौलाए फारूकी, तो ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो आप, क्या हाल है? तो जी बिल्कुल भाई, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और बहुत बहुत

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर.
2: आप परवाह ना है सूबाई हुकूमत की पहली तरजीह शहरों के तहफ़ फराम करण हों पर उन्होंने पॉलिसी रुगो दहशतगर्दी के हथी डेण है. सतसमा वफाकी वजीर अता ताड़ चयो है पीटीआई वारा पंजो बिटो मयार तब्दील करण लाय तैयार ना हैं. ही हर भेरे गालियों करे वरी यूटर्न वठंदा आहिन. पीटीआई वारन कदें भी दहशतगर्दी की मज़म्मत नेशनल एक्शन प्लान की हिमायत ना कई है.

0: सिंध पुलिस रुगो दावाऊं करण में पूरी धाड़िल राज ऐं कबीलाई तकरारनि जो ख़ात्मो न आणे सघी। लाड़काणे पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं ॾिठे जो गांगरा बिरादरी जे पंजनि ॼणनि खे क़तल कंदड़ हिक बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। वाके जो केस मक़तूल रजब गांगरो जे भाउ सिकंदर गांगरो जी फिराद ते अरिड़हं सुञातल ऐं ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल। FIR में ॼाणायो वियो त जवाबदार अहसान गांगरो, अब्बास लाल खान, रहीम खान, फिदा हुसैन, अयान आमिर, यासीन गुलाम मुस्तफ़ा, दोदो गांगरो ऐं ॿियनि पुराणे तकरार तां पंजनि ॼणनि खे क़तल कयो आहे। फायरिंग में रजब, संदस पुट कुर्बान ऐं रियाज़ गांगरो समेत बिलावल गांगरो ऐं अब्दुल्ला बिरोही मारिजी विया हुआ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: लास्ट मैच में जब उन्होंने बीट किया इंडिया को, तो दैट हैज बीन अ प्लस पॉइंट और कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी उम्मीद बंधी है वेस्ट इंडियन कैरेबियन सपोर्टर्स के लिए कि कैरेबियन जो है उनके अंदर अभी भी कन्विक्शन है और हमेशा से बाउंड्री हिटर्स रहे हैं, बाउंड्री लगाना उनके लिए कोई मसला नहीं रहा, उनके ये ट्रेडिशनल क्रिकेट है और उसको बरकरार रखा है। और दूसरी जानब अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कैरेबियन बॉलिंग में जेडन सील्स हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और जोसेफ अल्जारी जोसेफ हूं या दूसरे जोसेफ जो हैं शिमार जोसेफ, उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी इंप्रेसिव रही है। यस एट टाइम्स उन्होंने बॉल को स्प्रे किया, इधर उधर थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने चले गए, और आप जानते हैं कि इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट जब आप इंडियन कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिर जवाब जो है वो पूरी दुनिया देखती है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। लेकिन पिच जो थी खासतौर पर पहले मैच की जिसमें 406 रन चेज हुए, आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज दैट बिकॉज दैट वॉज टोटली रोड, जिस तरह हाईवे पे आप खेल रहे हैं, बिल्कुल कोई दो साइड ट्रैक था और उसमें कोई वियर एंड टेयर, नथिंग हैपेंड इन द एयर और ऑफ द सर्फेस, और इतनी आसान जिंदगी थी बल्लेबाजों की कि राणा शफाक मेरा और आप जैसे कमेंटेटर्स का भी दिल कर रहा था कि हम भी बल्ले उठाएं और पिच पर चले जाएं। तो इस किस्म की पिचेस जो है वो भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रू क्रिकेट लवर्स है ना वो छक्के चौकों के साथ साथ द कैट एंड माउस बिटवीन बैट एंड बॉल जो है उसको भी देखना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया। यस एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आई वुड से थिंकिंग होगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन दैट वाज मिसिंग द कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, ये होना चाहिए किसी भी सीरीज में, क्योंकि ये किसी भी सीरीज की खूबसूरती होती है।
1: बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने तजिया किया है और मैं समझता हूं कि पूरी दाद देनी चाहिए वेस्ट इंडीज को जिस तरह से उन्होंने चेस किया, और होपफुली कि इंडियंस अब ज्यादा कम्पेटिटिव और अच्छी विकेट्स बनाए और हमारी आवाज उन तक पहुंचे। बहरहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में जीएफएम रेडियो नेटवर्क पर एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो फिर जो पाकिस्तान श्रीलंका एंड इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कवर करना उसके हवाले से हमारे दोनों मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक ए ब्रेक एट जीएफएम रेडियो नेटवर्क। We'll be right back.

0: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्श ब्यूटी क्रीम
0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, आपके अपने शहर मीरपुरखास में एक रोजा मुफ्त डेंटल मेडिकल कैंप का तारीख 11 अक्टूबर 2026 बरोज इतवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लगाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर कल्पना कुमारी BDS RDS दांतों और मुंह की बीमारियों की माहिर, दांतों के दर्द, मसूड़ों से खून आना, दांतों की सफाई, दांतों में कीड़ा लगना और मुंह की तमाम बीमारियों का मुफ्त चेकअप करेंगी। एड्रेस अलनूर मेडिकल सेंटर, हरी क्वार्टर्स, मीरपुर खास। मजीद मालूमात के लिए राबता नंबर 03140022।
2: जलसा जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि।

0: बिल्कुल खैरवाफियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, स्पोर्ट्स खुद भी देखिए, खुद भी खेलिए। मैं जरा बड़ों से बात कर रहा हूँ, और बच्चों को खेलने का मौका भी दें उनकी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ, क्योंकि बाहर स्पोर्ट्स में समझता हूँ कि हमारे ब्लड में भी है, और स्पोर्ट्स आपको मेंटली और फिजिकली भी जो है वो तमानियत भी बख्शती है और आपको तंदो तवाना भी रखती है। तो इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम फैसलाबाद से कर रहे हैं लाइव, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो मेहमान और साथी कमेंटेटर्स जो इस सीरीज में कमेंट्री भी कर रहे हैं, एफएस मलिक यानी फरक शेर मलिक और सुल्तान अफजल। और हमने बात की थी पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन और श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के हवाले से, फिर वेस्ट इंडीज और इंडिया के हवाले से भी बात की। साथ साथ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम की कारकर्दगी भी जो है एशियन गेम्स में बेहतर रही है। कुछ मैचेस में देख सकता हूँ उसमें पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और ये अच्छी बात है क्योंकि एक वक्त में हम हॉकी में चैंपियंस हुआ करते थे, और चार मरतबा के हम वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, अजरान शाह ने मुतादद बार जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी मुतादद बार जीती है। तो हमारा हॉकी का जो माजी है वो बड़ा ब्राइट रहा है, और उम्मीद है करनी चाहिए कि फ्यूचर एक बार फिर हमारा ताबनाक और ब्राइट हो। इसी तरह स्कॉश में भी आप सब जानते हैं कि हम चैंपियन थे, स्नूकर में भी हम चैंपियन थे, जो 94 का जमाना है, 92 से लेकर हम दरअसल स्क्वाश में भी टॉप पे थे, हॉकी में भी और क्रिकेट में भी और स्नूकर में भी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ना ऐसा नहीं आप समझे कि सिर्फ क्रिकेट पे बात हो रही है, मगर जाहिर है कि क्रिकेट के इतने इश्यूज हैं कि यू कांट स्टे अवे फ्रॉम द करंट टॉपिक्स, और कुछ थोड़ी बहुत है तो मसाला ही, क्योंकि हम तो मसाला लगाने से परहेज ही करते हैं, मगर तौसीफ भाई यानी तौसीफ अहमद जो कि हमारे फॉर्मर ऑफ स्पिनर, और सकलैन मुश्ताक हमारे एक और फॉर्मर ऑफ स्पिनर, उनकी कहा सुनी भी काफी चली पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी एंड देन डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी, बट उम्मीद है कि वो मामला उनके दरमियान अब सेटल हो गया है और सेटल हो जाएगा। और जो आखिरी बयान मैंने तौसीफ अहमद का सुना उसमें उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, आई मीन कि अब वो मुसाहलियत की तरफ है। और मैं ये बात भी एक करना चाहता हूँ सुल्तान और एफएस की मौजूदगी में कि मेरे ख्याल इन फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी कहीं न कहीं ख्याल करना चाहिए, और खासतौर पर जब आप खेल छोड़ चुके हैं तो फिर एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है मैं समझता हूँ वो कायम रहनी चाहिए, एक दूसरे पर इस तरह की बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए, और इस बात को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं वो जब लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं चीफ सिलेक्टर हूं तो हो सकता है मुझे किसी खिलाड़ी में ऐसा टैलेंट नजर आए जो कल आने वाले चीफ सिलेक्टर को ना नजर आए, या मुझसे जो पहले चीफ सिलेक्टर था उसे ना नजर आया, उसने किसी और एंगल से देखा हो। मगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस तो अपनी बात करूं तो मैं हसन नवाज को शायद टेस्ट मैच खिलाऊं, हालांकि कोई सिलेक्टर मुझसे एग्री नहीं करेगा। मैं भाई आपके जो थे वो रजाउल्लाह, इन जैसे दो तीन हिटर ऊपर होते वो छक्के मारते शायद हमें एक टेस्ट मैच ही जीत जाते, तो सिर्फ ब्लॉकिंग ही मतलब थोड़े, जब आप ब्लॉक कर ही नहीं पा रहे तो शॉट्स ही मार लो। तो ये सारी चीजें आप डिफरेंट तरीके से सीखा देखते हैं लोग चीजों को। अगर न्यूजीलैंड कभी टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकलम से ओपनिंग ना करवाता, अगर हमारे हमारी मेंटेलिटी होती, और ब्रेंडन मैकलम ने दुबई में जो है वो टेस्ट मैच जितवाया डबल सेंचुरी करके पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ 225 रन बनाए टेस्ट मैच में इंडिया में, और फिर 54 गेंदों पर उन्होंने टेस्ट की सेंचुरी मारी, मिस बॉल वेव रिचर्ड्स को उन्होंने कहा बाय बाय। तो बात ही वो टेस्ट मैच ही था ना भाई साहब, तो खाली ये बातें करना कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमें लेके जाती हैं। तो हर बंदे की एक सोच अलग होती है, हर बंदे की सिलेक्शन अलग होती है, हर बंदे का पसंदीदा क्रिकेटर गुलूकार या एक्टर अलग हो सकता है, लेकिन असल में देखना चाहिए कि प्राइड एरिया क्या है। तो इसको अगर आप देख के चलेंगे तो मेरा ख्याल आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बेजा तनकीद से बचेंगे। बहरहाल कुकली हम मूव करते हैं सुल्तान, अब श्रीलंका की टीम आ रही है, श्रीलंका भी कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो इंग्लैंड से श्रीलंका में भी पिछले दिनों हारा, और अब इंग्लैंड गए थे वहां भी आ रहे हैं T20 में भी, वनडे में भी, उससे पहले टेस्ट मैच भी कोई इतने से नहीं खेल रहे थे, हम तो तीनों टेस्ट मैच वहां हार गए, वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच हम जीत गए थे, और जो लास्ट पाकिस्तान और श्रीलंका की हुई थी सीरीज वहां भी श्रीलंका हमसे अच्छा खेला था वो जीत गया है। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान की होम कंडीशन है, और साथ साथ श्रीलंका तो खैर एशियाई की टीम है, इंग्लैंड को वनडे में ज्वाइन करना एक ट्रायंगुलर इवेंट होगा, तो ये जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की जो T20 सीरीज है टेस्ट में, मैं एफएस से बात करूंगा। तो क्या कहते हैं इसको, किस नजर से देखते हैं? देखिए राणा साहब, बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए खासतौर पर T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान की टीम स्पेशली वनडे क्रिकेट में, और टेस्ट मैच में तो है ही, वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो बड़ा तेजी से नीचे गया है। और लास्ट टाइम जिस तरह आपने मेंशन किया श्रीलंका के साथ जब सीरीज हुई थी 1-1, तो पाकिस्तान की टीम शिकस्त सामना करना पड़ा था, तो यहाँ पर कंडीशंस भी पाकिस्तान को फेवर करेंगी और बहुत सारी और जो ऐसे नकात हैं जो पाकिस्तान के फेवर में होंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनको आपने बहुत हाईली रेट किया हुआ है, उनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जब ट्राई सीरीज होगी श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान के, उसके लिए पाकिस्तान का ये सीरीज जीत कर उस सीरीज में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर भी हार जाएंगे फिर जाहिर सी बात है आपका मोराल जो है वो अगली बड़ी सीरीज के लिए बहुत नीचे रहेगा। फिर इंग्लैंड जैसी टीम जो इस वक्त अपने पीक पे है, अपने रूज पर है, बहुत शानदार खिलाड़ी है उनके पास, तो आपको उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए स्पेशली कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होना, तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान को 3-0 से ये सीरीज जीतनी है।
1: यकीनन हम सब भी उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस सीरीज को जरूर जो है वो 3-2 से अपने नाम करे। FS ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास 3 मिनट का कोई वक्त बाकी है, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्या देखते हैं, पाकिस्तान को टेस्ट में क्या करना चाहिए, वो लीथल बॉलर नजर नहीं आते जो रन थ्रू कर जाए किसी टीम की बैटिंग को, स्पिनर्स पे हमने जब मिसबाह कैप्टन थे इनिसार के और उन्होंने परफॉर्म भी किया, और उनके साथ चाहे उमर गुल थे, जुनैद खान थे और भी जो पेसर्स आते गए वो परफॉर्म करते रहे और पाकिस्तान जीता रहा और टेस्ट में नंबर 1 भी बना, थोड़े वक्त के लिए बना मिसबाह की कप्तानी में। अब उस खोए हुए मयार को लाने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रहती है कि स्पिनर्स से स्पिन विकेट बना ली जाए, वो कर लिया जाए, वो करे, बट नथिंग इज वर्किंग इन अवर वे, ये स्पिन बना के भी मुल्तान में वेस्टइंडीज से हार गए।
2: जी हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ सीरीज होने जा रही है 2 टेस्ट मैचों की श्रीलंका के अगेंस्ट, एक टेस्ट जो है वो 9 को है और दूसरा 17 को, तो उसमें आई थिंक शायद हम जीत भी जाएं स्पिन विकेट्स बना के, साजिद खान एंड ऑल द स्पिनर्स मे जस्ट कम इन टू प्ले, नुमान अली, और उसके अलावा जो हम चीजें लैक कर रहे हैं वो है हमारा एटीट्यूड, और टेस्ट के लिए हम मेंटली तौर पर तैयार नहीं है, हमारे प्लेयर्स का जो टेम्परामेंट है वो टेस्ट खेलने वाला नहीं है। अब देखिए मोहम्मद रिजवान बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं साइड में, लेकिन आजकल जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, जितनी मायूस को उनकी बैटिंग वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाली सीरीज में देखने को मिली है, दैट वॉज जस्ट शेमफुल टू से द लीस्ट, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने डिफेंस किस तरह करना है, सीधी सीधी गेंदों को भी डिफेंस नहीं कर पा रहे थे, ऑफ द फ्रंट फुट बैक फुट कहां पे उन्होंने जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, लेंथ पिक करना उनको भूल ही गया है, तो उनका फुटवर्क जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, बड़े ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। और इमामुल हक जिनको हम बड़ा टेक्निकली स्ट्रांग समझते हैं और हाईली रेट भी करते हैं, मतवातर टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो भी सवालिया निशान है, एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेज अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से देखने को मिली हैं, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो लैक कर रही है, दैट इज द थिंग, कि कंटिन्यूसली उनको परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम शेल में, आई डोंट नो व्हाई उनको शेल में होना नहीं चाहिए, जितनी अच्छी उनकी टेक्निक है, जितनी सलाहियत के मालिक है, वो सलाहियत अपनी दिखा नहीं पा रहे, खास तौर पे टेस्ट मैचेस में। सलमान अली आगा मुसलसल खेल तो रहे हैं, बट मे बी फ्यू वुड डिसएग्री, आई डोंट थिंक ही इज अ टेस्ट प्लेइंग मटेरियल, और उसके साथ साथ जो है रजाउल्ला हूं या एक दो और यंगस्टर्स जो है उन्होंने प्रॉमिस शो किया है, पर जो चीज आप कह रहे हैं कि बॉलिंग में वो कन्विक्शन, वो लीथलनेस, वो एंथुसियाज्म जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जहां पे हमें वर्क करने की जरूरत है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, हमारे शहीन शाह अफरीदी हैं वो भी 4 ओवर्स के बॉलर रह गए, टेस्ट मैचेस में जो है वो लंबे स्पेल करने वाले दिन उनके गए और उनकी पेस भी कम हुई है, तो ये चीजें जो है ये कंसिडरेशन में आएंगी और इन पे वर्क करने की जरूरत है और टाइम लगेगा चीजों को बेहतर होने में, अब टाइम लगेगा, जिस हद तक हम फ्लॉप हो चुके हैं टेस्ट मैचेस में, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में, तो इसमें वापसी जो है वो यकीनन वक्त लेगी, ये इम्तहान है बोर्ड के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी और थिंकिंग टैंक के लिए, कोचिंग के लिए, एवरीवन, کیونکہ انٹرسٹ لیول جو ہمارے لوگوں کا ہے وہ بھی بہت کم ہوا ہے بیکاز آف دا پرفارمنس دا کرنٹ پرفارمنس آف دا ٹیم. کچھ تھوڑی سی امید نظر آئی تھی ایک ٹیسٹ جب ہم جیتا تھا ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ, لیکن اس کے بعد جو پرفارمنس ہم نے انگلینڈ کے خلاف دکھائی ہے وہ بہت مایوس کن تھی, اور اتنی مایوس کن تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پریڈکٹ کر رہے تھے لوگ, اسٹوئرٹ براڈ جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ 3-0 ہوگا, پاکستان آر ناٹ دا ٹیم دیٹ یوز ٹو بی 15-20 ایئرس بفور. تو اس قسم کی تنقید جب ہو رہی ہوتی ہے تو دیٹ از اے کنسرننگ تھنگ, اور اس دیکھیں وقت لگے گا جس طرح میں کہہ رہا ہوں, اس پہ کام کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے, اور ہر انڈیویجول جو ہے وہ جب اپنی اصلاح کرے گا اور کوشش کرے گا کہ مے بی آئی ایم دا ون who needs to take the initiative, then maybe things can get in a better way.
1: جی ہاں دوستو, دیکھنا ہوگا کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں کہ نہیں, لیکن جلدی جلدی ہم جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بس ہیں بریک کے بعد پروگرام سپورٹس راؤنڈ میں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माही डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए, हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03001270।
2: जो तजुर्बो हजारे मरीज आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर RHMP इस्लामाबाद 43 साल वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाब यमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश एन मुख्तलिफ़ सेहत की तकलीफुन लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह मौसर इलाज फराम कर रहा है। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन सखर। टाइमिंग छंछर का खमीस सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई। अपॉइंटमेंट मालूमात लाए हिंरी रातों करे 3440।
3: मोरू,
4: नौशहरो,
3: मीरपुर खास,
4: लाड़काना,
3: सखर
4: गूंज रही है हर जगह पर
3: सिंध की आवाज।
4: जीए FM नेटवर्क।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आपका अपना स्पोर्ट्स राउंड अप में आपका अपना मेजबान राणा शफाक, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं और की भी पाकिस्तान की भी हम जारी है। अरे एक अच्छी बात FS हुई है, अक्सर बोर्ड ने बाबर आजम की हमने बात की, उनका फैन का मामला भी, लेकिन ये हुआ कि एबटाबाद में भी हमने बड़ी तादाद देखी ग्रेड वन, और इसी तरह हमने देखा और जिस जिस जगह भी, और नसीम शाह से लेकर बहुत सारे क्रिकेटर्स को हम देख रहे हैं वो ग्रेड वन क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान की खेल रहे हैं। तो ये इस कदम को किस तरह से देखते हैं पिछली के?
6: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जो है स्टैंड लिया है पीसीबी ने कि क्रिकेटर्स जो हैं चाहे वो जिस लेवल के भी हैं, ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के हैं, गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, डायमंड के हैं, जो भी हैं, उनको इस स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए। और ये एट टाइम्स अच्छा भी होता है क्योंकि जब आप रातों रात या क्विकली स्टार बन रहे होते हैं तो देन यू हैव टू कीप योर हेड डाउन एज वेल, और आपको देखना होता है कि जमीन जो है वो आपके पांव के नीचे ही है चाहे आप जितना भी उड़ रहे हैं। तो जस्ट कीप दैट बैलेंस, वो बैलेंस तवाजन जो है वो रखने के लिए मेंटली तौर पर बहुत जरूरी है। और जब आप इस ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से गुजरते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से एज अ स्टार, देन योर मेंटल लेवल गोज इन अ डिफरेंट वे, और फिर आपको कदर भी होती है चीजों की। और फिर जब आप इंटरनेशनल सर्किट पे जाते हैं यहां से पॉलिश होकर, यहां से अपनी फॉर्म जो है वो रीगेन करके, देन यू फील डिफरेंट, और आप अच्छा भी फील करते हैं एज ए प्लेयर क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, भले आप यहां पे डोमेस्टिक खेल रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक में भी आपके कोलीग्स जो हैं वो सारे वही हैं ऑलमोस्ट जिन्होंने मोस्टली जो है वो फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है। तो उनके अगेंस्ट जब आप खेलते हैं और आप इस मरहले से गुजरते हैं तो देन यकीनन जो है वो चेंजेस जो है वो पॉजिटिव वे में आती हैं। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय पीसीबी।
5: बिल्कुल, इस बात में कोई शुबा नहीं कि ये पीसीबी का एक बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने एक तरह से फोर्स किया है या लाजम किया है अपने उन क्रिकेटर्स के लिए जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं, वर्ल्ड पॉपुलर हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, कि वो भी आकर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें। और माजी में हुआ ही करता था, हमने देखा है कि जब भी कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता था तो वो खुद ये फैसला किया करता था कि मैंने डोमेस्टिक खेलनी है। हमने देखा था रोहित शर्मा और विराट कोहली

0: आउट ऑफ फॉर्म थे और उन पर कुछ तनकीद हो रही थी, वेंट बैक इन द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड प्लेड देयर एंड स्कोर्ड लॉट ऑफ रन देयर। और अब वो दोबारा आप देखें वनडे क्रिकेट जो खेल रहे हैं एक ही फॉर्मेट, दे आर नाइदर प्लेइंग T20 नॉर प्लेइंग टेस्ट, बट दे आर प्लेइंग वनडे क्रिकेट एंड बोथ आर परफॉर्मिंग। और वही बाइट, वही काट, वही वेनम दोनों की बैटिंग में नजर आ रहा है, धार नजर आ रही है कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग में, दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि गेट बैक टू द बेसिक्स। जब आपको प्रॉब्लम आए, जब आप मसले मसाइल का शिकार हो, तो बुनियादी चीजों को दोबारा से इख्तियार करें, बुनियादी चीजों पे दोबारा से आए। और मैं समझता हूं कि कोई आपको दोबारा अच्छा होने से रोक नहीं सकता। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। अब इस बात में तो कोई शक नहीं, बाबर आजम हैज अ क्लास, फॉर्म का आना जाना है। तो इफ ही वॉन्ट्स टू गेन हिज फॉर्म बैक, बेहतर तरीका है कि वो डोमेस्टिक खेले और साथ साथ रेक्टिफाई करें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने भले 100 टेस्ट मैच खेले हो, मगर कोई आपका एक मैच खेला हुआ कोच भी वो बात रेक्टिफाई कर सकते जो शायद आपके जहन में ना हो। तो कभी कभार आपको बड़ों से पूछ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा माजी में करते रहे इंडियन बॉलर्स जो थे वो जब अर्ली 2000 में, तो वसीम अकरम से बहुत कुछ सीखा उन्होंने, चाहे जहीर खान हो, चाहे इरफान पठान हो, आपके जो श्रीशांत थे, नेहरा, एवरीवन यूज्ड टू कम टू वसीम अकरम एंड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और क्योंकि अकरम उन दिनों वहां थे भी, ही वाज डूइंग कमेंट्री फॉर स्टार मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यूनुस खान को अजहरुद्दीन ने जब इंग्लैंड में 2016 में, ही वाज गेटिंग फेल्ड एवरी टाइम, तो अजहरुद्दीन ने उन्हें कहा गया मजा नहीं आ रहा, और कुछ बताया भी होगा, तो स्कोर 175 सडनली उन्होंने रन कर दिए। तो बात कहने का मकसद ये है कि आपको उनसे पूछ लेने में या बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर कोई आपके कंट्री का है, कंट्री मैन है या नहीं, तो ये सारी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी अच्छा, एफएस अब वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट ईयर वनडे का, साउथ अफ्रीका चौकस हम कहते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, उसकी बातचीत हम मिस कर गए, लेकिन दो मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीते और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड चैंपियन, इंडिया तो जब भी आईसीसी का इवेंट होता है एक बड़ा कंटेंडर होता ही है, बड़ा फेवरेट होता ही है। उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका होम एडवांटेज, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन ममालों को कहा देख रहे हैं, आर यू सीइंग देम इन द सेमीज एनी वन ऑफ देम?
1: बाजार मुझे नहीं लग रहा ऑन पेपर इनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उनको देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो वेस्ट इंडियन है, जो कैरेबियन है, उन्होंने जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको अभी भी कंटिन्यू किसी हद तक रखा हुआ है। पाकिस्तान के नाम से भी मंसूब की जाती थी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लेकिन अब वो है जो रिसेंट कुछ सालों में वो नहीं देखने को मिलती। पाकिस्तान जो है वो लो से लो लोअर होता गया है। आई होप के विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटर हो जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। और वेस्ट इंडीज एक वाइट टीम है जिसको मैं समझता हूं कि दे कैन सरप्राइज ऑन द गिवन डे, बट जिन टीमों का आपने जिक्र किया रानाश पाक, साउथ अफ्रीकन टीम अपने होम कंडीशन में दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस, दे आर गोइंग टू बी वेनमस। आपको बता रहा हूं, अगर वो चौक ना करें, जो चौकर्स का थप्पा लगा हुआ है उनके नाम के अगेंस्ट, वो उसको वो बैक भी करते हैं और उसको वो जो है वो जस्टिफाई भी करते हैं मोस्टली। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि वो सेमीफाइनल में जाके हार गए थे और सेमीफाइनल में वो 99 में भी हारे, तो बड़े मुकाबलों में नॉकआउट स्टेजेस पे जाके आईसीसी के इवेंट्स में साउथ अफ्रीकन जो हैं वो मोस्टली चौक कर जाते हैं, भले जितनी भी अच्छी फॉर्म में हों, जितने भी अच्छे स्टार्स के साथ खेल रहे हों, तो ये एक चीज है। और दूसरी जानब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़े इवेंट्स में, आईसीसी के इवेंट्स में जो है वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, 6 वर्ल्ड कप उन्होंने जीत रखे हैं। और आजकल जिस किस्म की क्रिकेट इंडिया खेल रही है, तो आप इंडिया को भी कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते, दे आर ऑल्सो गोना बी पैरेलल टू ऑस्ट्रेलिया इन साउथ अफ्रीका। और इन तीन टीमों के दरमियान जो कशाकश रहेगी वो काबिले दीद होगी यकीनन आने वाले वर्ल्ड कप में। बहरहाल वर्ल्ड कप की तैयारी इंग्लैंड भी करेगी, न्यूजीलैंड भी करेगी, और देखने का जरूर मजा आएगा। और जो कॉन्टेस्ट है वो इन तीन टीमों के मबेन जो है वो काबिले दीद रहेगा, मैं ये समझता हूँ।
0: जी हाँ, यकीनन इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जो है वो, उसके अलावा आपने वेस्ट इंडीज का भी जिक्र किया। न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम हो सकती है क्योंकि 2019 में बहुत अच्छा खेले थे और बहुत करीब भी थे जीतने के वर्ल्ड कप। बहरहाल लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से उम्मीद करनी चाहिए कि तब तक टीम शेप में आ जाए, क्योंकि अभी कम से कम साल बाकी है। मगर उस की ट्रॉफी की रूनमाइयां मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। ब्रायन लारा, बड़े बड़े ग्रेट्स को जो है वो इन्वाइट किया जा रहा है और आईसीसी मुख्तलिफ प्रोग्राम अभी से कर रहा है। बहरहाल आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में मैं बड़ा मशकूर हूँ मेरे साथी पलक शेर का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपने प्रीशियस थॉट्स उन्होंने शेयर किए। इसी तरह सुल्तान अफजल का, तो उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के लिए। अपने मेजबान राना शफाक को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीक बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जैसा मैं ऑलवेज कहता हूँ प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, अभी जिंदगी पड़ी है, तो अच्छे वक्त की उम्मीद रखिए, एंजॉय कीजिए। पाकिस्तानी टीम पे भी मुंतबिक होता है ये शेर वैसे, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, अभी जिंदगी पड़ी है। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह निगेबान। न्यूज ब्रेक भी अब आने वाला है आपका, मैं इसलिए जल्दी जाना चाह रहा हूँ, और साथ साथ एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए जीए एफएम रेडियो नेटवर्क। अल्लाह निगेबान।

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: कोई एक जान जाती है ये क्लैरिटी के साथ, अल्लाह ना करे कोई एक जान जाती है, उसका जिम्मेदार सुहेल अफरीदी हो। इस चीज को उनको समझ लेना चाहिए, हर मुमकिन हद तक कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जो भी तोहीन अदालत की बनती है उस पर कहीं कोई किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। जो लोग अरेस्ट होंगे इस धरने के लिए जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनका बिल्कुल जिस तरह ट्रायल होता है।
3: गार्डियन की नाकामी जो जिम्मेवार केपी जो वो वजीर सुहेल अफरीदी है, अल्लाह ना करे कभी जान वही तो सुहेल अफरीदी जिम्मेवार हों। घर वजीर मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोहसिन नकवी चाहे तो माहिदो तैयार थी चुको हो, 99 सैकड़ो इतफाक भी थी चुको हो। माहिदो सदर सुहेल अफरीदी के पा अची वे हा, जैसे खबर हुए हा तो माहिदो वीचो हों तो गादियों ही न करूं हा। गर्दी के मामले से गाल तो वह इनकार कन था, इस्लामाबाद से चढ़ाई कर नींदी। केपी के वे वजीर सुहेल अफरीदी गांधीन की कमेटी के जारी कल मसवदो जारी कर छो। सुहेल अफरीदी है तो ड्राफ्ट में को भी गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो न है। मुतालबो हो तो वजीर आजम अपोजिशन लीडर विच में मुलाकात जो बंदोबस्त कर वे। वजीर आजम हुकूमती इतिहाद पीपी ए अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदन की एक गरियल सियासी कमेटी जोड़ी वे। पीटीआई बानी ए बुशरा बीबी के जेल मैनुअल मूजिब हक डना वन।
0: सिंध भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
4: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु मां गुलाब खान बेण।

मेमणु सिंध कोस्टल रेजिलेंस मनसूबो शुरू टट्टो सिजावल बदीन के सामुंडी पट्टी तरक्की कंदी वडो वजीर सैयद मुराद अली शाह एम डी के टेस्ट में बेजाबतगियों मुस्तफ़ा कमाल पारा पी एम डी सी के जांच जो हुकुम बारन जी सोशल मीडिया इस्तेमाल बाबत जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जोड़ जी सिफारिश रिपोर्ट अदालत में जमा स्पेशल रिपोर्ट भी अवाम बुधी सकंदा सिंध काबीना जा फैसला अवाम के केतरो फायदो मिलंदो सिंध में गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार हादसन में फोतगी से 7 लाख रुपया मुआवजो मुकरर उन डस में सिंध के रोडन से हलंद गाड़ियों लाए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार डिनी वही है हादसन की सूरत में फोतिन के वारसन के 7 लाख रुपया मुआवजो फराहम करने के लिए सिंध के एक्साइज खाते इंश्योरेंस कंपनियों विच में मुफाहमती यादाशनामे से सही कई वयं उन मौके तकरीब के खिताब कदे एक्साइज सेक्रेटरी अली अहमद बलोच तो सिंध हुकूमत प्रोफेशनल मोटरवेज वेहीकल्स तरमीमी एक्ट 2026 तहत रोडन से हलंदड़ गाड़ियों लाए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार डिनी है जैसे मकसद हादसन की सूरत में मुतासर मानून संदन खानदान के फौरी माली मदद फराहम करना है तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तहत हादसे में फोत थे शख्स के वारसन के 7 लाख रुपयन तई जडे त मुख्तलिफ नोयत के माजूरी या जिस्मानी नुकसान की सूरत में 5 लाख रुपयन तई मुआवजो फराहम किया वो अली अहमद बलोच मूजिब हाँ इंश्योरेंस का सवा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुंतकली या सालियाने टैक्स की अदायगी मुमकिन न हूंदी अवामी सहूलत के लिए टैक्स स्टाम्प ड्यूटी समेत मुकर्रर इंश्योरेंस प्रीमियम जहां तफसील एक्साइज खाते के वेबसाइट से पिण फराहम कया वा एक्ट लागू थियण का हेल तई जी मू इंश्योरेंस कराए चुका उसे भी नए मुहिदे के समूर नुकतन से फायदो हासिल कर सकंदा सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण है सिंध हुकूमत की पहरी अवलीन तरक्याती रिथाओं के वक्त सिर पूरो करण तर्जी है पीपी हुकूमत 13,000 का स्कीमू शुरू क्यों जिनमें 9,000 का मुकम्मल थी चुकियो बोड मुतासर इलाकन में 724 किलोमीटर रोडन जो 80% का कम मुकम्मल थी चुको है एक बयान में हुन जो जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम के वधायण पिण हुकूमत के तरजीहों में शामिल है ऑरेंज ग्रीन लाइन जरिए लखे मानुन के सफरी सहूलतू डी वयू आन येलो रेड लाइन के मुख्तलिफ तामीराती हिस्सों से कम तेजी से जारी है नयू एवी बसू डबल डेकर बसू जल्द कराची पहुंची वन्दू संदस चवण हो तो हुकूमत तरक्याती रिथाओं के वक्त से पूरा करते पूरा ध्यान दई रही है जी आवाम के जल्द फायदा मिली सकन सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह 311 मिलियन डॉलर तकरीबन 87 अरब रुपया की लागत वाली सिंध कोस्टल रेजिलेंस प्रोजेक्ट की बाकायदा आगाज कर छो तकरीब के खिताब कदे मुराद अली शाह चयो ता ही थटे बदीन सिजावल के साहिली बिरादरी के लिए एक तब्दीली वारो सफर जो आगाज है उहे बिरादरी जी माहौलियाती तब्दीली की फ्रंट लाइन से बीठल आन उन्हें बका रोजगार साहिली माहौलियाती निजाम की बेहतरी से जुड़ियल है उहे समुंड की चाढ़ सिम कलर बोर्ड सख्त मौसम के वधंदड़ खतरन के मुंह दई रहा है सिंध सरकार उन चैलेंजन के मुंह दियण लाए कदम खणी रही है क्लाइमेट रेजिलेंस जो मतलब माण्हुनि जो तहफुज रोजगार के महफूज बनाए पैदावारी असासन के बचाण उन्हनि कुदरती निजामन के बहाल करण है उन सा टिन्ही साहिली जिलन के 500 गोठन के लगभग 1,96,000 घर अटकल 10 लख माण्हुनि के फायदो पहुंचो मनसूबे मुताबिक 43,000 नौजवान के मार्केट की जरूरत मुताबिक महारतुन की तरबियत डिनी वी मनसूबे के रोजगार कम्यूनिटी की तरक्की वाले हिस्से से लगभग 30.45 अरब रुपयन की लागत जो अंदाजो है यह मनसूबो 8 वडन ड्रेनेज सिस्टम्स के बहाल अपग्रेड कंदो जिनमें नागनढोरो घोड़ाबारी घारो पीरपठो बुहारा जाती मलकानी शाखू शामिल हैं साफ पानी वाले निजाम के हथी मिलंदी तकरीब के खिताब कदे सिंध के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपाशी वाले वजीर जाम खान शोरो साहिली जिलन के गुर्बत बोर्ड समुंड की चाढ़ पैदावारी जमीन की तबाही माहौलियाती खतरन का बचाने की जरूरत है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के कंट्री ऑपरेशंस हेड ये प्रोजेक्ट ADB लाए खास तौर से अहमियत रखे तो यह गुजरल 15 सालन का वधिक अरसे में सिंध में ज़रात खुराक फितरत बहराड़ी की तरक्की आसान के पहरे वही सीड़पकारी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन नजब शाह प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नजीर अहमद मेमण पिण उते मौजूद हुआ।
सिहत वारे वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सिंध में एम डी कैट टेस्ट में बेज़ाब्तगिन जो नोट

इज वठी पीएमडीसी जे सदर खे नतीजनि जी जांच जे लाइ ख़त लिखी छॾियो। ख़त में सेंटर वाइज उमेदवारनि जे अंग पास थियण जी शरह ऐं हाई स्कोर्स जो तजुर्बो करण जे लाइ चयो वियो आहे। ख़त मूजिब एमडी केट मर्कज़नि जे नतीजनि में गैर मामूली ऐं वाज़े फ़र्क़ जी बि जांच कराई वञे। ख़त में हाज़िरी शीट्स, सिटिंग प्लान, सेंटरनि जे रिकॉर्ड ऐं रिज़ल्ट डेटा जो जाइज़ो वठण जी हिदायत बि कई वई आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमेदवारनि जी जाइ ते ॿियनि माण्हुनि जी टेस्ट ॾियण ऐं पेपर लीक थियण वारे इल्ज़ामनि जी बि जांच कराई वञे। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाकी वज़ारत पीएमडीसी खे जांच मुकमल करे 15 ॾींहनि में रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत कई आहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 16 सालनि खां घटि उमिरि जे ॿारनि जे सोशल मीडिया इस्तेमाल बाबति केस में नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन ॿारनि जे ऑनलाइन तहफ़ुज़ लाइ उमिरि जी तस्दीक जो असराइतो निज़ाम ऐं जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जोड़ण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। कमीशन ॿारनि खे ऑनलाइन ग्रोमिंग, जिन्सी इस्तेहसाल ऐं नुक़सानकार मवाद खां बचाइण जे लाइ कानूनी ऐं इंतज़ामी क़दम खणण खे अणटड़ क़रार ॾिनो आहे। नेशनल कमीशन ॿारनि ऐं अण ॼातल नौजवाननि विच में गैर ज़रूरी ऑनलाइन राब्तनि खे महदूद करण जी बि सिफ़ारिश कई आहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 16 सालनि खां घटि उमिरि जे ॿारनि जी सोशल मीडिया इस्तेमाल बाबति ॿुधणी हेठि केस में नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 17 सिफ़नि ते मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा कराए छॾियो। कमीशन दरख़्वास्त में उथारियल ख़दशनि खे तस्लीम कंदे ॿारनि जे हक़नि जे तहफ़ुज़ जे लाइ उमिरि जी तस्दीक जे असराइती निज़ाम ते ज़ोर ॾिनो आहे। खाते ॿारनि जे ऑनलाइन जिन्सी इस्तेहसाल जी जांच लाइ ख़ुसूसी सलाहियतुनि खे वधाइण ऐं टेक्नोलॉजी ज़रिए ॿारनि जे इस्तेहसाल ख़िलाफ़ ख़ुसूसी निज़ाम जोड़ण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। जवाब में चयो वियो आहे त पेका एक्ट जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वञे, उन में तरमीमूं कयूं वञनि। दरख़्वास्त गुज़ार पारां मोहम्मद जलाल हैदर एडवोकेट हाईकोर्ट ऐं यया फरीद केस जी पैरवी करे रहिया हुआ। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध काबीरा जे ताज़े इजलास में कणक जी क़ीमतुनि खे मुस्तहकम करण, बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ 1 अरब रुपया जारी करणु, सिहत जे इदारनि खे अपग्रेड करणु, सरकारी ज़मीनुनि लाइ नओं कानून आयण ऐं थर में कोयले जी माइनिंग वधाइण समेत केतिरा ई अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि। पर सवाल उहो आहे त उन्हनि फ़ैसलनि जो आम माण्हुनि जी ज़िंदगीअ ते अमली असर कॾहिं ऐं केतिरो पवंदो। सिंध काबीना कणक जी रिलीज़ पॉलिसी 2026-2027 तयार कई आहे। हुकूमत वटि लखें बोरियूं कणक मौजूद हुजण जो ॿुधायो वियो आहे। कणक ऐं अटे जी क़ीमत विकिणणु इजलास में कयो वियो। हुकूमत जो मक़सदु सरकारी कणक फ्लोर मिलुनि ऐं चेकिन खे जारी करे अटे जी क़ीमतुनि खे मुस्तहकम करणु आहे। पर हिते बुनियादी सवाल उहो आहे त सरकारी कणक जी रियायती क़ीमत जो फ़ाइदो आख़िरकार सार्फ़ ताईं पहुचंदो या विच वारे निज़ाम में महदूद रहंदो। عوام खे असुल नतीजो उन वक़्त साम्हूं ईंदो जॾहिं बाज़ार में अटे जी क़ीमत वाक़ई घटि थींदी ऐं घटि में घटि मौजूदा क़ीमत में इस्तेहकाम ईंदो। ॿिए तरफ़ बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ 1 अरब रुपियनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। रक़म साफ़ पाणी, सफ़ाई ऐं सिहत सफ़ाई जे सहूलियत लाइ इस्तेमाल थियणु घुर्जे। हीउ फ़ैसिलो ज़रूर मुतासिर इलाइक़नि लाइ अहम आहे, पर अवाम जो सवाल उहो हूंदो त रक़म कहिड़नि इलाइक़नि में ख़र्चु थींदी, कहिड़ा खानदान फ़ाइदो वठंदा ऐं कम जी निगरानी केरु कंदो। सिहत जे शोबे में नॉर्थ कराची जे चिल्ड्रन अस्पताल खे 200 बिस्तरनि वारी माउ ऐं ॿार जी अस्पताल तौरु तरक़ी ॾियण जी तजवीज़ पिणु मंज़ूर कई वई आहे। चनेसर डिस्पेंसरी ऐं मेटरनिटी होम खे 24 कलाक हलाइण जो मनसूबो पिणु साम्हूं आयो आहे। जेकॾहिं उहे मनसूबा वक़्त सिर मुकमल थियनि था त ख़ासि तौर औरतुनि ऐं ॿारनि जे लाइ सरकारी सिहत जूं सहूलियतूं बहितर थी सघनि थियूं। पर माज़ीअ वांगुरु हिते बि बजट, तामीर, अमले जी मौजूदगी ऐं दवाउनि जी फराहमी अहम इम्तिहान हूंदा। सरकारी ज़मीनुनि बाबति नओं कानून आणण लाइ बि तजवीज़ूं तलब कयूं वयूं आहिनि। मक़सदु सरकारी ज़मीनुनि जी अलाटमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ नओं कानूनी ढांचो ठाहिणु ॿुधायो पियो वञे। हिन फ़ैसिले जी अहमियत उन ॻाल्हि में हूंदी त नओं कानून शफ़ाफ़ियत, अवामी मुफ़ाद ऐं ज़मीन जे बहितर इंतज़ाम खे केतिरो यकीनी बणाए थो। सिंध काबीना थरब्लाक 2 में कोयले जी माइनिंग जी सालियानी सलाहियत 7.6 मिलियन टन मां वधाए 11.2 मिलियन टन करण लाइ मुआहिदनि में तरमीमुनि जी मंज़ूरी पिण ॾिनी आहे। हिन सां तवानाई जी पैदावार ऐं मुआशी सरगर्मियुनि में वाध जा इम्कान मौजूद आहिनि। पर साॻे वक़्तु थर जे मक़ामी आबादी, रोज़गार, माहौल ऐं वसीलनि मां मक़ामी माण्हुनि जे फ़ाइदे बाबति सवाल पिण अहम रहंदा।
मजमूई तौर ते सिंध काबीना जा फैसला केतरनि शोबनि सां लाॻापियल आहिनि।

0: उन्हनि मां अवाम खे फ़ाइदो पहुचण जा इम्कान मौजूद आहिनि। पर कंहिं बि हुकूमती फ़ैसिले जी कामयाबीअ जो असल मयार ऐलान न पर उन ते अमल दराबद हूंदो आहे। कणक जो फ़ाइदो सार्फ़ ताईं पहुचे, ॿोॾि मुतासिरनि ताईं रक़म ऐं सहूलियतूं पहुचनि, इस्पतालुनि में अमलो ऐं दवाऊं मौजूद हुजनि ऐं सरकारी ज़मीनुनि बाबति नओं निज़ाम शफ़ाफ़ हुजे त पोइ उहे फ़ैसिला वाक़िए अवामी रिलीफ में तब्दील थी सघनि था। हाणे नज़र उन ॻाल्हि ते हूंदी त सिंध हुकूमत उन्हनि फ़ैसिलनि खे कागज़नि मां कढी अमली मैदान में केतिरी तेज़ी, शफ़ाफ़ियत ऐं जवाबदेही सां लागू करे थी। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी, हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या उन बीमारीअ जो इलाज बाद में, खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कंदा आहिनि। अलहमदुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 06477700।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा। सिंध में गाडियुनि जे लाइ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाज़मी। हादसन में फोतगीअ ते 7 लख रुपया मुआवज़ो मुक़रर। सिंध सरकार 13 मां 9,000 स्कीमूं मुकमल कयूं आहिनि। हुकूमत तरक़ियाती रिथाउनि खे वक़्त ते पूरो करण ते पूरो ध्यानु ॾेई रही आहे, जीअं अवाम खे जल्द फ़ाइदा मिली सघनि। शर्जील इनाम मेमण। सिंध कोस्टल ऐं रेजिलेंस मनसूबो शुरू। ठट्टो, सिजावल ऐं बदीन जे सामूंडी पटी तरक़ी कंदी। वॾो वज़ीर सैद मुराद अली शाह। एम डी के टेस्ट में बेज़ाब्तगियूं। मुस्तफ़ा कमाल पारां पी एम डी सी खे जांच जो हुकुम। ॿारनि जी सोशल मीडिया इस्तेमाल बाबति जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जोड़ण जी सिफ़ारिश। रिपोर्ट अदालत में जमा ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अवां ॿुधी सघंदा। सिंध काबीना जा फ़ैसिला, अवाम खे केतिरो फ़ाइदो मिलंदो। सिंध में गाॾियुनि जे लाइ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाज़मी करार। हादसनि में फोतगीअ ते 7 लख रुपया मुआवज़ो मुक़रर। उन ॾस में सिंध जे रोडनि ते हलंदड़ गाॾियुनि लाइ मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाज़मी करार ॾिनी वई आहे। हादसनि जी सूरत में फोतियुनि जे वारसनि खे 7 लख रुपया मुआवज़ो फराहम करण जे लाइ सिंध जे एक्साइज़ खाते ऐं इंश्योरेंस कंपनियुनि विच में मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते सहियूं कयूं वयूं। उन मौके ते तक़रीब खे ख़िताब कंदे एक्साइज़ सेक्रेटरी अली अहमद बलोच चयो त सिंध हुकूमत प्रोफेशनल मोटरवेज वेहिकल्स तरमीमी एक्ट 2026 तहत रोडन ते हलंदड़ गाॾियुनि लाइ मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाज़मी करार ॾिनी आहे, जंहिंजो मक़सदु हादसनि जी सूरत में मुतासिर माण्हुनि ऐं संदन ख़ानदाननि खे फौरी माली मदद फराहम करणु आहे। हुन चयो त मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तहत हादसे में फोत थियल शख़्स जे वारसनि खे 7 लख रुपियनि ताईं, जड॒हिं त मुख़्तलिफ़ नोयत जे माज़ूरी या जिस्मानी नुक़सान जे सूरत में 5 लख रुपियनि ताईं मुआवज़ो फराहम कयो वेंदो। अली अहमद बलोच मूजिब हाणे इंश्योरेंस खां सवाइ गाॾी जी रजिस्ट्रेशन, मुंतकली या सालियाने टैक्स जी अदायगी मुमकिन न हूंदी। हुन चयो त अवामी सहूलियत जे लाइ टैक्स ऐं स्टाम्प ड्यूटी समेत मुक़रर इंश्योरेंस प्रीमियम जा तफ़सील एक्साइज़ खाते जे वेबसाइट ते पिण फराहम कया विया आहिनि। हुन चयो त एक्ट लागू थियण खां हेल ताईं जेकी माण्हू इंश्योरेंस कराए चुका आहिनि, उहे बि नए मुआहिदे जे समूर नुक़्तनि ते फ़ाइदो हासिल करे सघंदा। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत जी पहिरीं अवलीन तरक़ियाती रिथाउनि खे वक़्त सिर पूरो करणु तर्जी आहे। पीपी हुकूमत 13,000 खां वधीक स्कीमूं शुरू कयूं, जिन मां 9,000 खां वधीक मुकमल थी चुकियूं आहिनि। ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में 724 किलोमीटर रोडनि जो 80% खां वधीक कम मुकमल थी चुको आहे। हिकु बयान में हुन चयो त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाइण पिण हुकूमत जे तरजीहुनि में शामिल आहे। ऑरेंज ऐं ग्रीन लाइन ज़रिए लखे माण्हुनि खे सफ़री सहूलियतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि। येलो ऐं रेड लाइन जे मुख़्तलिफ़ तामीराती हिसनि ते कमु तेज़ीअ सां जारी आहे। वधीक नयूं एवी बसूं ऐं डबल डेकर बसूं जल्द कराची पहुची वेंदियूं। संदसि चवणु हुयो त हुकूमत तरक़ियाती रिथाउनि खे वक़्त ते पूरो करण ते पूरो ध्यानु ॾेई रही आहे, जीअं अवाम खे जल्द फ़ाइदा मिली सघनि। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह 311 मिलियन डॉलर तक़रीबन 87 अरब रुपया जे लागत वारी सिंध कोस्टल रेजिलेंस प्रोजेक्ट जी बाक़ायदा आगाज़ करे छॾियो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे

वक़्त मुताबिक़ महारतुनि जी तरबियत ॾिनी वेंदी। मनसूबे जे रोज़गार ऐं कम्यूनिटीअ जी तरक़ीअ वारे हिसे ते लॻभॻि 30.45 अरब रुपियनि जी लागत जो अंदाज़ो आहे। हीउ मनसूबो 8 वॾनि ड्रेनेज सिस्टम्स खे बहाल ऐं अपग्रेड कंदो, जिन में नांगनढोरो, घोड़ाबारी, घारो, पीर पठो, बुहारा, जाती ऐं मलकाणी शाखूं शामिल आहिनि। साफ़ पाणीअ वारे निज़ाम खे हथी मिलंदी। तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऐं आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त साहिली ज़िलनि खे गुरबत बोॾि, समुंड जे चाढ़, पैदावारी ज़मीन जी तबाही ऐं वधंदड़ माहौलियाती ख़तरनि खां बचाइण जी ज़रूरत आहे। एशियाई डेवलपमेंट बैंक जे कंट्री ऑपरेशन हेड चयो त हीउ प्रोजेक्ट ADB लाइ ख़ासि तौर ते अहमियत रखे थो। हीउ गुज़िरियल 15 सालनि खां वधीक अरसे में सिंध में ज़रात, ख़ोराक, फितरत ऐं बहिराड़ी जी तरक़ी ऐं आसान जे पहिरें वॾी सीड़पकारी आहे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जे चेयरमैन नजब शाह ऐं प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर नज़ीर अहमद मेमण पिण उते मौजूद हुआ। सिहत वारे वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सिंध में MD कैट टेस्ट में बेज़ाबतगियुनि जो नोटिस वठी PMDCA जे सदर खे नतीजनि जी जांच जे लाइ ख़त लिखी छॾियो। ख़त में सेंटर वाइज़ उमेदवारनि जे अंग पास थियण जी शरह ऐं हाई स्कोर्स जो तजुर्बो करण जे लाइ चयो वियो आहे। ख़त मूजिबि MD कैट मर्कज़नि जे नतीजनि में गैर मामूली ऐं वाज़े फ़र्क़ जी बि जांच कराई वञे। ख़त में हाज़िरी शीट्स, सिटिंग प्लान, सेंटरनि जे रिकॉर्ड ऐं रिज़ल्ट डेटा जो जाइज़ो वठण जी हिदायत बि कई वई आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमेदवारनि जी जाइ ते ॿियनि माण्हुनि जी टेस्ट ॾियण ऐं पेपर लीक थियण वारे इल्ज़ामनि जी बि जांच कराई वञे। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाकी वज़ारत PMDCA खे जांच मुकमल करे 15 ॾींहनि में रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत कई आहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 16 सालनि खां घटि उमिरि जे ॿारनि जे सोशल मीडिया इस्तेमाल बाबति केस में नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन ॿारनि जे ऑनलाइन तहफ़ुज़ लाइ उमिरि जी तस्दीक जो असराइतो निज़ाम ऐं जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जोड़ण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। कमीशन ॿारनि खे ऑनलाइन ग्रोमिंग, जिन्सी इस्तेहसाल ऐं नुक़सानकार मवाद खां बचाइण जे लाइ कानूनी ऐं इंतज़ामी क़दम खणण खे अणटड़ करार ॾिनो आहे। नेशनल कमीशन ॿारनि ऐं अण ॼातल नौजवाननि विच में गैर ज़रूरी ऑनलाइन राब्तनि खे महदूद करण जी बि सिफ़ारिश कई आहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 16 सालनि खां घटि उमिरि जे ॿारनि जी सोशल मीडिया इस्तेमाल बाबति ॿुधणी हेठि केस में नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 17 सिफ़नि ते मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा कराए छॾियो। कमीशन दरख़्वास्त में उथारियल ख़दशनि खे तस्लीम कंदे ॿारनि जे हक़नि जे तहफ़ुज़ जे लाइ उमिरि जी तस्दीक जे असराइती निज़ाम ते ज़ोर ॾिनो आहे। खाते ॿारनि जे ऑनलाइन जिन्सी इस्तेहसाल जी जांच लाइ ख़ुसूसी सलाहियतुनि खे वधाइण ऐं टेक्नोलॉजी ज़रिए ॿारनि जे इस्तेहसाल ख़िलाफ़ ख़ुसूसी निज़ाम जोड़ण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। जवाब में चयो वियो आहे त पेका एक्ट जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वञे, उन में तरमीमूं कयूं वञनि। दरख़्वास्त गुज़ार पारां मोहम्मद जलाल हैदर एडवोकेट हाईकोर्ट ऐं यया फरीद केस जी पैरवी करे रहिया हुआ। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध काबीना जे ताज़े इजलास में कणक जी क़ीमतुनि खे मुस्तहकम करणु, बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ 1 अरब रुपया जारी करणु, सिहत जे इदारनि खे अपग्रेड करणु, सरकारी ज़मीनुनि लाइ नओं कानून आयण ऐं थर में कोयले जी माइनिंग वधाइण समेत केतिरा ई अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि। पर सवाल उहो आहे त उन्हनि फ़ैसलनि जो आम माण्हुनि जी ज़िंदगीअ ते अमली असर कॾहिं ऐं केतिरो पवंदो। सिंध काबीना कणक जी रिलीज़ पॉलिसी 2026-2027 तयार करण जी हिदायत कई आहे। हुकूमत वटि लखें बोरियूं कणक मौजूद हुजण जो ॿुधायो वियो आहे, जॾहिं मार्केट में कणक ऐं अटे जी क़ीमत में वाधि जो ज़िक्र पिण इजलास में कयो वियो। हुकूमत जो मक़सदु सरकारी कणक फ्लोर मिलुनि ऐं चेकिन खे जारी करे अटे जी क़ीमतुनि खे मुस्तहकम करणु आहे। पर हिते बुनियादी सवाल उहो आहे त सरकारी कणक जी रियायती क़ीमत जो फ़ाइदो आख़िरकार सारफ ताईं पहुचंदो या विच वारे निज़ाम में महदूद रहंदो। अवाम खे असुल नतीजो उन वक़्त साम्हूं ईंदो जॾहिं बाज़ार में अटे जी क़ीमत वाक़ई घटि थींदी ऐं घटि में घटि मौजूदा क़ीमत में इस्तेहकाम ईंदो। ॿिए तरफ़ बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ 1 अरब रुपियनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। रक़म साफ़ पाणी, सफ़ाई ऐं सिहत सफ़ाई जे सहूलियत लाइ इस्तेमालु थियणु घुर्जे। हीउ फ़ैसिलो ज़रूर मुतासिर इलाइक़नि लाइ अहम आहे, पर अवाम जो सवाल उहो हूंदो त रक़म कहिड़नि इलाइक़नि में ख़र्च थींदी, कहिड़ा ख़ानदान फ़ाइदो वठंदा ऐं कम जी निगरानी केरु कंदो। सिहत जे शोबे में नॉर्थ कराची जे चिल्ड्रन अस्पताल खे 200 बिस्तरनि वारी माउ ऐं ॿार जी अस्पताल तौरु तरक़ी ॾियण जी तजवीज़ पिणु मंज़ूर कई वई आहे। चनेसर डिस्पेंसरी ऐं मेटरनिटी

0: प्लेटफॉर्म खे 24 कलाक हलाइण जो मनसूबो पिण साम्हूं आयो आहे। जेकॾहिं उहे मनसूबा वक़्त सिर मुकमल थियनि था त ख़ासि तौर औरतुनि ऐं ॿारनि जे लाइ सरकारी सिहत जूं सहूलियतूं बहितर थी सघनि थियूं। पर माज़ीअ वांगुरु हिते बि बजट, तामीर, अमले जी मौजूदगी ऐं दवाउनि जी फराहमी अहम इम्तिहान हूंदा। सरकारी ज़मीनुनि बाबति नओं कानून आणण लाइ बि तजवीज़ूं तलब कयूं वयूं आहिनि। मक़सदु सरकारी ज़मीनुनि जी अलाटमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ नओं कानूनी ढांचो ठाहिण ॿुधायो पियो वञे। हिन फ़ैसिले जी अहमियत उन ॻाल्हि में हूंदी त नओं कानून शफ़ाफ़ियत, अवामी मुफ़ाद ऐं ज़मीन जे बहितर इंतज़ाम खे केतिरो यकीनी बणाए थो। सिंध काबीना थरब्लाक 2 में कोयले जी माइनिंग जी सालियानी सलाहियत 7.6 मिलियन टन मां वधाए 11.2 मिलियन टन करण लाइ मुआहिदनि में तरमीमुनि जी मंज़ूरी पिण ॾिनी आहे। हिन सां तवानाई जी पैदावार ऐं मुआशी सरगर्मियुनि में वाध जा इम्कान मौजूद आहिनि। पर साॻे ई वक़्त थर जे मक़ामी आबादी, रोज़गार, माहौल ऐं वसीलनि मां मक़ामी माण्हुनि जे फ़ाइदे बाबति सवाल पिण अहम रहंदा। मजमूई तौर ते सिंध काबीना जा फ़ैसिला केतिरनि ई शोबनि सां लाॻापियल आहिनि ऐं उन्हनि मां अवाम खे फ़ाइदो पहुचण जा इम्कान मौजूद आहिनि। पर कंहिं बि हुकूमती फ़ैसिले जी कामयाबीअ जो असुल मयार ऐलान न पर उन ते अमल दराबद हूंदो आहे। कणक जो फ़ाइदो सार्फ़ ताईं पहुचे, ॿोॾि मुतासिरनि ताईं रक़म ऐं सहूलियतूं पहुचनि, इस्पतालुनि में अमलो ऐं दवाऊं मौजूद हुजनि ऐं सरकारी ज़मीनुनि बाबति नओं निज़ाम शफ़ाफ़ हुजे त पोइ उहे फ़ैसिला वाक़े अवामी रिलीफ में तब्दील थी सघनि था। हाणे नज़र उन ॻाल्हि ते हूंदी त सिंध हुकूमत उन्हनि फ़ैसिलनि खे कागज़नि मां कढी अमली मैदान में केतिरी तेज़ी, शफ़ाफ़ियत ऐं जवाबदेही सां लागू करे थी। ही हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह निगहबान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके सां कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जी FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़। बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।